0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यशां।

नमस्कार, एफएम इंडेक्स 1.8 MHz पर ये आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948, वैशाख माह, 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026। इस समय दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी आज की पहली प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से बोल रहे हैं। FM 101.8 MHz पर दोपहर के 12 बज चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली प्रसारण सभा की फिल्म संगीत कार्यक्रम के साथ। आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम में होगा आपकी पसंद फरमाइशी फिल्म संगीत। तो पहली फरमाइश आई है जैसलमेर, जैसलमेर से पल पल दिल के पास, ब्लैकमेल फिल्म से। आइए सुनते हैं पहली फरमाइश को, ब्रिज गोदानी जैसलमेर।

0: जैसलमेर से ये फरमाइश थी ब्रिज गोयदा ने, और ब्लैकमेल फिल्म किशोर कुमार की आवाज़, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और राजेंद्र कृष्ण की बोल। एक छोटे से अंतराल के बाद आइए फिर से सुनेंगे फिल्म संगीत को।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अगली फरमाइश है लानेला गांव जैसलमेर से देदू राम की। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर इन दो आवाजों में विदाई फिल्म का ये गीत।

0: है
1: अरे कहती हूँ मैं
0: बस खूब है।
1: सब्ज परी में किसकी ये मेरा गुलफाम, सब्ज परी में किसकी ये मेरा गुलफाम, मैं हूँ किसकी।

0: देखो अपनी प्यार का, देखो अपनी प्यार का, देखो अपनी प्यार का तुम्हें सिखलाऊं छे, तू गाएगा।
1: हाँ गाऊंगा।
0: तू नाचेगा।
1: हाँ नाचूंगा।

करूं अल्फाज नहीं मिलते, क्या तेरी तारीफ करूं अल्फाज नहीं मिलते, परियों को भी तो ऐसे अंधा

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। व्हाट्सएप और ईमेल पर आधारित प्रत्येक शनिवार आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। और आइए सुनते हैं अगली फरमाइश है लानेला गांव से ही सुजाना राम की। आइए सुनते हैं इस गीत को।

लता मंगेशकर और उदित नारायण इन दो वजों को अभी आप सुन रहे थे उत्तम सिंह का संगीत और आनंद बख्शी के बोल के साथ फिल्म दिल तो पागल है से।

0: जो सबसे अलग है,
1: वो लड़की जो सबसे अलग है,
0: वो लड़की जो सबसे अलग है,
1: वो लड़की जो सबसे अलग है।

लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की

फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से। अगली फरमाइश आई है बाड़मेर के चौहटन से प्रकाश शर्मा की, बॉर्डर फिल्म से। आइए सुनते हैं रूप कुमार राठौर और उनके साथियों की आवाजों में। हम आपको बता दें कि फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से। प्रत्येक शनिवार को आपकी पसंद फिल्म व्हाट्सएप बेस्ड आधारित आपकी पसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप व्हाट्सएप नंबर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आकाशवाणी से फरमाइशी फिल्म संगीत सुन सकते हैं। और आइए सुनते हैं बॉर्डर फिल्म से प्रकाश शर्मा, बाड़मेर के चौहटन से फरमाइश आई, सुनते हैं इस गीत को।

बॉर्डर फिल्म से आप सुन रहे थे इस गीत को। फरमाइश आई थी बाड़मेर चौहटन से। आइए अब सुनते हैं जैसलमेर से गांव भादासर कालू राम की फरमाइश है। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? या अल्लाह, काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।

0: किधर को जाते ही दंदाना, क्यों पास ना आते ही दंदाना, क्या मारी ये बाता दंदाना, दिल तोड़ी ये घाता दंदाना। तो मैं किधर को जाता ही तंदाना, क्यों पास ना आता ही तंदाना, जहाँ मारी ये बाता तंदाना, दिल तोड़ ये खाता तंदाना। हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: ताली ताक झूम ताक ताली ताक झूम ताक झाला आम ताक झूम ताक ताली के नंत ताक नाक ताक झूम ताक नाक नाक झूम ताक नाक नाक झूम ताक नाक नाक झाम धारी ता झाग धारी ता जाने जाने को धारी ता धारी के ने धारी ता झाग धारी ता जाने जाने को धारी ता धारी के ने झाम धारी जाग धारी ताक नाक ताक ताक झूम ताक झूम ताक झूम ताक झाम धारी जाग धारी जाने जाने को ताक झूम ताक झूम ताक झूम ताक ताक धंगी को धूम अरे ताक धंगी को धूम ताक धंगी को धूम।
0: आखा नारंगी की पाता पाता चूसा रंगी, चालान जैसे मस्त शराबी, हालत रंग बिरंगी।

हमें माना गरीब है तंदाना, सूर से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे करीब है तंदाना। हमें माना गरीब है तंदाना, सूर से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे करीब है तंदाना। हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।

0: पीछे नहीं हटूंगा मैं,
1: मिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह मैं बुद्धि को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
2: गुमनाम फिल्म से आप सुन रहे

अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे धड़कन फिल्म से। कार्यक्रम आपकी पसंद फरमाइशी फिल्म संगीत से आइए अंतिम फरमाइश सुनते हैं जयनारायण व्यास कॉलोनी जैसलमेर से गर्व की फिल्म पाकीजा।

पाकीज़ा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे इस गीत को। फरमाइश थी जयनारायण व्यास कॉलोनी जैसलमेर से गर्व भाटिया की। इसी के साथ ही आपकी पसंद फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM एंड 101.8 MHz पर यह आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। थोड़ी देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे। विभिन्न आयु वर्ग, क्षेत्रों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय समुदाय के सदस्य पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदाय की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में आज से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। 14 जून तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रगणक मकान की निर्माण सामग्री और सुविधाओं को लेकर 33 सवाल कर रहे हैं। उधर झुंझुनू में आज विधायक राजेंद्र भांबू ने जनगणना टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री भांबू ने कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का काम है। पहले चरण की जनगणना का मूल निवास से कोई संबंध नहीं है। जहां लोग वर्तमान में रह रहे हैं, उन्हें वहीं पर जनगणना में शामिल होना चाहिए। उन्होंने लोगों से प्रगणकों का सहयोग करने की अपील की। इस बीच प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ स्वगणना का काम कल पूरा हुआ। इसमें राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों ने खुद अपनी सूचनाएं दर्ज कराने के विकल्प का उपयोग किया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से इस बीमारी की रोकथाम के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जागरूकता बढ़ाना और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण और चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूती से जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्वच्छता, सतर्कता और समय पर इलाज को डेंगू से बचाव के प्रभावी उपाय बताया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वस्थ और स्वच्छ राजस्थान के निर्माण में सहभागिता निभाने का आग्रह किया है। हनुमानगढ़ जिले के खेतों में फिर से

0: सफेद सोना यानी नरमा की फसल लहलाएगी। कृषि विभाग ने सीजन के लिए 1,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नरमा बुवाई का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 65,000 हेक्टेयर अधिक है। पिछली बार गुलाबी सुंडी कीट के प्रकोप से फसल को हुए नुकसान को देखते हुए इस बार प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत 19 प्रमाणित कंपनियों के बीटी कॉटन बीजों को ही मान्यता दी गई है। और अब मौसम। राज्य में अगले 1-2 दिनों में गर्मी दोबारा से प्रचंड रूप ले सकती है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। इससे हीट वेव का असर फिर देखने को मिल सकता है। वहीं पिछले 2-3 दिनों से कई स्थानों पर जारी आंधी बारिश की गतिविधियों से लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। कई शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ, जो सामान्य से कम है। हालांकि उमस और गर्मी का असर बना हुआ है। उधर फलौदी और चित्तौड़गढ़ में कल अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार मापा गया। उदयपुर और कोटा में दिन भर गर्म हवाओं का असर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज 6 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट बताया गया है। राजधानी जयपुर में भी बादल छाए रहने और अंधड़ की संभावना है। आज शनि जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर 12 जिले के सीताबाड़ी में मेला भर रहा है। ये मेला सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है। वहीं अनेक महिलाएं वट सावित्री का व्रत कर रही हैं। इस अवसर पर वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं को लेकर एक नोटिस जारी किया है। इसमें CBSE ने कहा है कि अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं होने वाले छात्र छात्राओं को 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का फायदा ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM 101.8 MHz पर। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम पणिहारी।

0: पुण्यहारी कार्यक्रम सोनाली सेंग में नो घना घना राम राम राम राम टीना बेन घना सारा राम राम
1: राम राम सुबह बेन
0: राम राम टीना बेन आ तो यहाँ हवा है कोकर डूडी थोड़े
1: क्यों
0: क्यों तावड़ो थोड़े जायो है
1: ना ना यार क्यों
0: ओ
1: तावड़ो तो मैं तब से जिको तो तब से ही भाई
0: ये तो बात हूँ कहना लेती थोड़ी भी गई कि भाई मौसम रहा मैं बात तो खाना पड़ से सियाले में लाडू खाया तो उन्हें तावड़ा तो खाना पड़ से पर टीना बेन अगर जब गौर से बात सोचो नहीं तो वास्तव में अनो कहीं नहीं हमें ऐसे हर एक रेमोंडे सुन लो अरे गर्मी अरे गर्मी तो भाई गर्मी आगे पड़ती थी नहीं
1: बिल्कुल
0: और अगला संकट अगर अपे अनो याद करो या ध्यान में ले आओ नहीं तो एक आर की तो नौ नहीं याद आ जाए
1: सही बात
0: पर चलो वो पहले री बात थी आज मैं आपको वर्तमान में जी रहा हूँ सारी सुख सुविधाओं है भगवान दया सु सरकार घना सुख किया पर भी देखो गर्मी पहले जितनी कौन पड़े फिर भी हणो तो हमें भयंकर है ये बात तो सत्य है
1: बिल्कुल सही है
0: जान थोरे देखो को नींद ने अठठ होया होए
1: अच्छा
0: आज गर्मी रो असर थोरे
1: लू तो है तो मैं देखो चेहरो लूसीज से गर्मी सुकर थोरे चेहरे में तो थको नहीं रह से तावड़े श्वास हो तो फर्क पड़ से
0: एक बात थे गौर करो रीना बहन के अगर अपे छोया में बम मान लो पेंडू करा धीरे धीरे या के अपन चलनो होवे तो छोया में आपे एक किलोमीटर बे किलोमीटर को नहीं पांच किलोमीटर तक चल जाओ नहीं तो उठाई कौन पड़े
1: बिल्कुल सही बात है और अगर तावड़े में पेड़ हुए तो बेवनो और ठंडा है ठंडक रहे भी पेड़ों से
0: ये बात भी सही है
1: और हवा में फर्क पड़े उतले और अगर पेड़ नहीं हुए तो भी अपो छोया में घर रहे सारे सारे बहुत तो ही फर्क पड़े
0: सोरो भाई जे
1: हाँ।
0: और जे वे तावड़ो पछे तो थे देखो मतलब एक प्रकृति रो आप कह सको अपर जो को शरीर है उसमें वास्तव में एड़े तावड़े में बुद्धिमता तो आई जगह घर सू नहीं निकलो पर हाँ हमें जो अपनी पणियारी है जरूरी अपन तो बातों करना ही जाए तो पछे आवनो पड़े तो सबसे पहलो कौम है कि ये लाय में अगर आप बाहर निकलो तो मथो हमेशा ढकोड़ो होना चाहिए तो ये जगह टीना बहन मनो कई बार हंसी भी आवे के ये लाय में और घने सारे सी में देखो अपर जो घूंघट प्रथा थी नी वो बढ़िया लगती थी
1: सही बात
0: क्योंकि बे प्लस था एक तो मथो ढकोड़ो रहो तो लू लगती कौन गर्मी सीधी जो किरण है सूरज री वो मथे में कौन जानती तो मथा दुखता ही कौन और लुगाई हुए टाइम री थी अगर सुंदरता देखो नी तो वास्तव में देखते बनती थी मेरी सुंदरता तो बड़ी बनाई है
1: सही बात
0: जाओ पैसा भांगो पछे उगना चेहरे मथे कई सारा वो थे लगाओ पछे जाए चेहरो दिखन जेड़ो भी जुको पहले आज सो जुको 50 साल पहले 60 साल पहले री जुको सुंदरता थी वो प्रकृति री थी वो कने एड़ा कोई साधन को नहीं था फिर भी मोरे चेहरे में तेज हतो
1: बिल्कुल सही बात है तुम्हारी
0: तो उवे तेज रो कारण की तो एक तो सी में भी मोर मुंडो ढकोड़ो रहन तो
1: बिल्कुल
0: तो घनी सारी ठंड है जो मोरे लगती कोनी और एड़ी लाय में भी मोरो चेहरो ढकोड़ो रहतो तो मुंडो दुसली तो कोनी लू लगती कोनी चेहरो कालो भी पड़तो कोनी अगे वो गीत भी है नी घूंघट धूप में निकला ना कर है नी तो ये धूप रे मोए तो हमें वो तो आप कर कौन सको भाई घूंघट रहो तो हमें आप कौन कह सको घूंघट प्रथा है हटाए दी चलो कोई बात कोनी पर मथो ढकनो तो आप सलाह पर बहनों ने दी सको
1: आप पूरे गांव गुवाड़ में तो आज भी घूंघट प्रथा है और बेचारी बहनों घूंघट में रहवे भी
0: निकाला है तो कोई अच्छी बात है देखो हूँ तो खुली सलाह दो ही कि अगर थे थोड़े बुजुर्गों और सम्मान करो अगर थोड़े घर में माए थे उम्र सम्मान करो अगर पाड़े पड़ोस में आपका बड़ा बुजुर्ग है उम्र सम्मान करो और थोड़ी सी अगर आंखियों तक घूंघट निकाले तो बहुत अच्छी बात है उसे अपनी संस्कृति झलके और उसे उठा पड़ेगी बीड़नी है तो वे घूंघट में टीना बहन देखो बुजुर्गों री और आप सु बड़े री तो इज्जत हो जाए पर जो को घूंघट निकाल रही है घर री बहू उए री इज्जत डबल हो जावे देवणी हुई
1: सही बात कह तो लाख रुपए री बात है वाकई में लोग बहुत तारीफ करे क्योंकि हमें जो को टाइम है नी वे टाइम में थे देखो आजकल री नई जनरेशन घूंघट बिल्कुल पसंद ही को नहीं करे और ये न मो अगर जे कोई घूंघट निकाल जावे नहीं तो वाकई में लोग बहुत तारीफ करे और मुंडे में तो कहवे भी है गड़ी राब आस पड़ोस रा लोग भी कहवे कि तो घूंघट कट के जावो ही बहुत बढ़िया लगे
0: भाई उदाहरण की बात हो जावे
1: हाँ
0: तो कवन रो मतलब है टीना बहन के घूंघट यानी आंखों नहीं कहते छाती तक पूरो मुंडो ढक लो पछे उगाड़ो ही मत
1: आंख में शर्म होनी चाहिए
0: आंख रो सम्मान हुई वो भी कुत्तो वो भी कोई हर टाइम तो बुजुर्ग अपो कने बैठा कौन हर वक्त तो कोई आप यहाँ को नहीं आप तो अपने काम में पूरा हुआ है तो कोई हर वक्त तो वो बात को नहीं है लेकिन हमें बात आ जावे घूंघट ना छोड़ के सर ढक्कन नहीं झुको की ये गर्मी में
1: सही।
0: ये गर्मी में अगर अपने मथो ढक के रखो है तो गर्मी है जो अपन मथे में गुन जावे और मथो भी गुन दुखे और अपने गर्मी से बचोड़ा भी रहे। तो कई बार देखो ये गर्मी में मन लू लगे पछे नाक बहता रही पानी बेई और पछे जो टसके हमें लू लग गई। अरे लू लगन रहा जो थे खुद भी अपना रहो ना तो थे मथा ढको ना तो थे ढंग सु चुन्नी भी ले लो या जो बाइक चला रहे हो भाई कोई आजकल स्कूटियों भी चला पर बच्चियों बीजो तो उ में भी ढक ढका के चलो ताकि वो जो गर्मी सीधी आप शरीर में नहीं जावे
1: सही।
0: तो अगर गर्मी सु अपन बचनो है तो सबसे पहलो कौमे कहे नहीं कह पानी आवन से पहले पाल बंदो। अगर आप पहले ही सुरक्षा री तरफ बढ़ जाऊं तो आप ये लू से बच सको तो हूँ तो आप थोनो टीना मैंने सलाह दीस के गर्मी रे महीनो बिना कोमरा बाहर बिल्कुल मत निकलो और जितो जरूरी हो सके सुबह थोड़ा बेगा उठो ना और भगवान दया से देखो परसों तो मास आयो है आज शुरू हुए है जल्दी उठो जल्दी नहाओ नित्यनेम करो तो ए ये में बे चार फायदा हो जावे। एक तो बेगो नहाना हो जावे जितो जल्दी इंसान नहावे नहीं टीना बहन उतो ओ निरोग शरीर रही।
1: सही बात है दिनचर्या सुधर जावे ने ऊपर बेगा उठतो तो सारो काम बेगो से देखो अपन बेगा उठिया अच्छा पर दिन रोज को पहलो काम है आप रो खुद रोज को काम करना हाँ। वो समय से हो जावे पूरे बाद पर रसोई री तैयारी टाइम से रोवे अगर खुद रे वास्ते योगा प्राणायाम करनो है तो वो भी क्यों ना आध घंटो दे सको बेगा उठतो तो देखो सारे काम थाना याद ही आसे
0: भाई 5 बजे उठो और 1 से 8 बजे उठो तो 3 घंटा हो गया नहीं
1: हां तो ठंडी टाइम रे जब थे खानो और बनावे तो थानो गर्मी भी घणी कोनी लगे और नाश्तो खानो सब समय सुने पड़ जावे जो मैं आज को आया पण यार इन है तो अपन कार्यस्थल में टाइम से आवनो ही पड़े तो ऊपर 10:30 पूरी खानो अपन बनाई कर पछे आवे ने तो कितो बेगो ऊपर काम निपटे
0: काम निपटे
1: और एज काम अगर जे घरे बैठी हो रे भाई तो 1-1:30 बजे तक चलतो रहे
0: तो पछे ओ लाइन ओ चूलो
1: पछे गर्मी में पसीना झरता रहो झारा झरता रहे
0: और पछे आहा ओ झारा झरे जाने पछे आप उन सोमलो नो एहसास कराओ मैं गर्मी में रसोई बनाऊं ये तो रसोई बना रहे हो और थोनो जिमा रहे हो भाई एहसान कर रहे हो जद की थोरो काम है थोनो जल्दी करनो चाहिए ये मौसम में जल्दी उठनो चाहिए और
1: बीजो जिको थो कहो केनो जिको मैं पर पुरुषोत्तम मास है सुबह पर टाइम सर नहाए धोए अगर थोड़ी देर भक्ति भावना में रहवे तो पर मन वैसे शुद्ध हो जावे ने और जब अपर मन शुद्ध शांत हुए अपर ठाकुर जी रो नाम ले तो वास्तव में अपर मन में पॉजिटिविटी आवे और वो टाइम अपर जो खानो और बना हुए
0: वाह
1: ओ तो वाकई में बच्चे वो स्वाद ही अलग हुए
0: बात हो ना मन तो बहुत जोरदार कह दी कि मतलब मन रे मोए अगर अपर शांति वे सुकून वे और धार्मिक विचार वे वो टाइम अपर रसोई बनाऊ तो ओ रसोई भी सात्विक हो जावे और ओ रसोई जब अपर टाबर खावे बैसाख चल रो तो देखो नी के अपर जो बना मास महीना दिन बनाया ये हिसाब से बनाया ये गर्मी में धर्म पुण्य रोई बात यहाँ से जोड़ दीजिए वैसाख में धर्म न जोड़ दियो हमें जेठ न जोड़ दियो जो पुरुषोत्तम मास आयो ई न जोड़ दियो ताकि धार्मिक विचार जब महिलाओं नवे ना ना बधक महीने में धर्म करो बढ़िया हुई बधक महीने मंदिर जाओ बढ़िया हुई बधक महीने में बेगो नहाणो बढ़िया हुई तो ओ वे विचारों से बचे वो जल्दी जल्दी अपना काम करे और जल्दी जल्दी और एक ही में और मोटी बात है कि जब एक माँ घर में बेगी उठे बेगी नावे नित्यनेम करे तो अगर बच्ची बड़ी सारी घर में है तो वो नहीं लग से कि ना मेरी माँ है काम कर रही तो वो भी करो
1: और ये रास्ते अड़ो नहीं भी करे नहीं सुबह में तो वो सुबह कोई फर्क कौन पड़े अड़ो करे चाहे नहीं करे
0: हाँ
1: लेकिन वो चीज रोज देखी है कि उरी माँ रोज बेगी उठे रोज सारो काम करे सुबह नित्यनेम अपना पूजा पाठ सब करे तो जब ओ वो अवस्था में पुग जावे तो हाफे वो सब चीजों करण लग जावे
0: सही है ना हाँ ठीक है बचपन है हाँ, नहीं करे तो हाँ, कोई बात को नहीं, पर आगे जदू ना वो याद तो रही दिमाग में
1: हमेशा याद रहे। और बेटी रे मोए थो ना हमेशा माँ हुए दिखसे ही दिखसे। अच्छा वो उम्र रे कोई भी पड़ाव मत है दोनों उरी बातों में हुए रे कोई ना कोई व्यवहार में चल के
0: बिल्कुल। तो देखो गर्मी तो आप जगह है जितो ज्यादा हो सके गर्मी से अपो आना तो खाली मथो ढकन की बात करी थी जिके मैं अपो बहनों ने इतना उपदेश दे दिया हूं। पर गर्मी में एको नहीं गुरु को मथो ही ढको उरे पेट में भी खाण में भी उए तरीके री चीजें हुए तरीके रा पेय पदार्थ हुए ताकि शरीर भी अड़ो मजबूत हुए ताकि गर्मी गर्मी असर नहीं करे।
1: सही
0: तो आपकी बात तो जरूर कर सो पर हमें पहले संगीत जरूरी है तो बहनों ने सुनाओ कुछ सीखिए
1: पहले संगीत सुना उस पर थोड़ा संदेश सुना है तो पछे संगीत
0: भाई संदेश तो देर आप बोलिया जाओ थे गीत सुनाओ
1: गीत सुना जे चलो ठीक है गीत सुना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वाह सावाटी नवन फुटरो की सुनाई था तो केसरिया बालम और थोर जो संदेश और तो मन में थी वो भी सुना दिया।
2: बिल्कुल जरूरी है ने
1: अपने तो गर्मी नो आलाप रहा था के भाई लू बज रही है गर्मी घणी है वो तो देखो है जैसे सेंगो न ठाए और बज रही है पर हमें ये गर्मी में कई सारी अड़ी चीज है जिसे आप बच सको। हां पर इतनी सारी चीजों में सबसे पहले नंबर में तो किया होई
2: किया होई बताओ
1: बताओ थे बताओ हूं बताओ
2: जी बताओ
1: देखो कि आना रोटी आप मान लो नहीं खाओ चल जावे एक दिन दो दिन
2: गर्मी में तो चल जावे
1: घणा घणा चक्कर आवे कि आंखियों आड़ी रात आ जावे रोटी खाई कोनी पेट में धान कोनी पर बे तीन दिन चार दिन चला सके इंसान अन जे नहीं वे पानी
2: हालत खराब हो जावे
1: तो आदमी चार घंटा ही कोन रह सके।
2: बिल्कुल
1: ईर बगा जो अमृत चीज है आपरे संसार में वो है पानी।
2: सही बात
1: और ये तावड़े रे महीना तो वास्तव में अमृत बन जावे।
2: बिल्कुल अमृत तुलिए जे अमृत सुगम कोने और है भी सही गर्मी में अपन पानी थोड़े थोड़े अंतराल में पीऊं तो भी पर तो एक बात और गौर करी आपको रसोई में जितनी देर रहो ने तो पानी अद्धो लोटो लोटो सीधो गट गट गट पी जावे लेकिन थो अगर जाए एसी रे कम कूलर रे कमरों में बंद हो बैठसो नहीं तो पानी कम पी से
1: मतलब थकी के होना चाहोगे मजदूरी करो
2: काम करता रहो तो पानी की तलब होती रहे क्योंकि औरतों रे साथ एक ही समस्या है नी कि उस समय मते पानी को नहीं पी पावे और पूरे समय समय मते पानी पीता रहे जो आप घर बीजे लोगों रो ध्यान रखो जो खुद रो भी ध्यान रखना चाहिए तो पानी की तलब नहीं भी हुए तो ये गर्मी रे में डिहाइड्रेशन से बचन रे वास्ते पानी अपन पीमतो रहना चाहिए
1: दिन भर
2: जी
1: पर ए पानी अगर जिते कम पो हुई तो जो समस्या चली हुई रे

0: भी समस्या रहते हैं। जो अपर प्रधानमंत्री अटल भूजल योजना चली है तो अपर सरकार ए प्रयास है कि हर घर तक पानी पहुंचे। पहली बात, हमें जब बरसात आवे, जब अपर तालाब में पानी आ जावे
1: हम्म,
0: तो चलो टोंका भरी जावे, सुविधा हो जावे। और 12 के 6 मासो पानी आयो, कदे के 12 मासो पानी आयो है, तो
1: सही
0: वास्तव में वो 13 महीनों 12 महीना पानी चलतो
1: है।
0: और लोग चला भी लेता।
1: सही
0: और हमें 12 महीना और पानी तलाई में आवे नहीं तो 4 महीने में खत्म तो करें।
1: सही, मिराकल फेरी बात है
0: हमें
1: थोड़ी।
0: वो खत्म तो कोई तलाई तो पानी पिए को नहीं, न को तो कोई आकाश पिए पाछो, तो धीरे धीरे पिए, पर लेकिन वो पानी तो जावे के।
1: सही है। हमें
0: ए
1: अपना
0: सोचने वाली बात है जीना बहन, अगर जी आप ये बात मतलब गहरो नहीं सोचा ही नहीं तो ए आप एक गलत आप और साथ में खुद रहे साथ में भी कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी के साथ में भी
1: बिल्कुल।
0: कर रहे हो। जिसको जल रो पे दोहन ज्यादा करो, ये जितो ज्यादा आप बिगाड़ो ये पानी ना उतो नहीं बिगाड़ना चाहिए।
1: सही बात है। पानी रो ज्यादा बिगाड़ो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जो है पर भूजल में जो है वो सीमित है, और वो जो सीमित है तो वो ना अपन बचाई के भी रखना है। लेकिन हमें आजकल आपको देखो है कि हमें पर पहले घर कच्चा होता था तो अपन गोबर गुणी ऐसा सब नीपता था, तो वो सो घर पर ठंडो रहमतो, तो पानी अपन तड़ाई सु ले आता था, तो पानी गोबर और सु भी अच्छी खासी गीली हो जाती तो पानी कम चाहिए। हमें पर पक्का मकान है तो पक्का मकान ना धोवन वास्ते पानी चाहिए। तो हाँ, लोग पानी री बाल्टियां डोल डोल डोल डोल घर ना धोए धोए पानी रो नाश करे। बीजो एक देखो कि हाथ धोवन ना जब जावे ने, जानो नल
0: हाँ
1: ना खोले सब सु बत्तो पानी
0: पानी
1: डुले हुए टे
0: थोड़े बराबर
1: हाँ। हमें आ गया वेस्टर्न टॉयलेट,
0: वो में वो जब
1: जितनी देर टॉयलेट करन जासो उतनी बार उन्हें फ्लश कर सो, ओ बार बार हुए रमोए पानी डुलतो जावे तो है सबसे ज्यादा नुकसान करे। तो ये जिको अपर ही हमें जीवन शैली बदली है नी, वह सुबह अपन देखो है कि अपर पानी रो जो अपव्यय है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हो, तो अपन इन्हें थोड़ो कम करना चाहिए। कम करने रे वास्ते अपन खुद ना ही प्रयास करना भी
0: भाई
1: चाहिए।
0: देखो टीना बहन के जीवन शैली जो को अपन बदली है वो तो बदलनी पड़ से, क्योंकि समय रे साथ में तो चलना पड़ से। हमें सबरे पक्का मकान हुए, सबरे सुविधा हो, और कोई भी घरों में नहीं हुए तो ऊपर से हीन दृष्टि से देखो, या अपन खुद ना यो लगे कि उम्र तो आराम है
1: पर
0: अपन
1: अपन
0: आराम
1: अगर
0: पड़े।
1: दो बाल्टी ढोल के और वही जगह पोचो लगाओ इससे
0: हमें
1: बढ़िया है कि अपन आधी बाल्टी में
0: बस
1: पोचो
0: ए जो
1: लगाओ।
0: तो बात कही नहीं कि भाई हमें पानी घर धोने में पानी घड़ो डुल जावे, या जिकी जिकी चीज में पानी घड़ो डुल रहे हमें अपने उम्र कम को कर करो। सीधी सीख बात है कि पानी ढोल के पोचा मत लगाओ, आधी बाल्टी में लगा लो। अगर
1: बिल्कुल।
0: चतरो मनक हुई कोई थो जड़ो तो आधी बाल्टी में बढ़िया पोचा लगा ले। बीजी
1: बिल्कुल सही बात है।
0: बात आ गई कि हमें जो घर में हर जितना मनक है उतनी गाड़ी है, हमें वो गाड़ी गंदी हुई मतलब बाल्टी भर पानी ढोल या मतलब पचे कपड़ो ढोल। अरे थोड़ो सी पानी लो कपड़ो का तो, अरे स्कूटर ना बढ़िया धो लो, गाड़ी ना बढ़िया धो लो, तो वो पानी बच जावे। या तो पचे वो ना की करे गाड़ी धुआं ना ले जावे तो वो फुहारे से पानी ज्यादा ढोले, वो
1: बिल्कुल।
0: पानी खराब। अच्छा घणोरे घरों में फोर व्हीलर भी है तो वो ना धोण बगा भी दुनिया भर रो पानी।
1: आरो है तो पानी
0: तो अच्छा जबकि घणी डॉक्टर खुद सलाह दे रहे हैं कि पानी अपन जो को साधारण अपन जो को जो पानी आप पीता था वो पानी पियो वो अपन ज्यादा फायदा करे। पर हमें वो कहने के एक ओखन बड़े ओखन सुनाओ के थे क्यों तसिया, तो कि तस्ते देखे तसिया एक ओखन है मतलब तसिया यानी कि दौड़िया।
1: अच्छा।
0: कई आदमी पूछे कि तू दौड़े क्यों, तो भाई तस्ता देखे से ओ दौड़े दो मैं दौड़िया। सोचियो को नहीं, सोचियो को नहीं कि क्यों दौड़े, तो एक रीत चल गई कि वो आरे रो पानी पिए तो आप आरे रो पानी। अच्छा पियो जो कोई बात को नहीं पी लो। हमें अगर जो को पानी निकले जो खराब पानी हुई, अगर एक हन तोमेड़ो भर जे शुद्ध पानी वेरो निकले तो बे तोमेड़ा वेरा
1: खराब
0: खराब
1: पानी
0: पर
1: कपड़ा
0: निकले, हमें आप ऊ ना को उपयोग में लो।
1: धोने
0: ए
1: में ले
0: भी
1: लो,
0: ए
1: पोछो
0: पानी
1: में ले
0: बचावन का
1: लो।
0: तरीका है कि ना थे कपड़ा धोण में ले लो, पोछा लगावन में ले लो, बर्तन धोण में ले लो,
1: कूलर भरण में लो अना
0: तो
1: गर्मी है तो
0: वो उरो सदुपयोग हो जावे पानी रो,
1: सही
0: तो ओ आरो रो पानी भी पी सको और वो पानी भी आप उपयोग में
1: ले सके।
0: ले सको। हमें तीजी बात हो गई नल आली, ए बात तो देखो मैं आप मथे पिटवे गऊ घर में दिन भर में आई बेस भी हुई टबरो नो की बड़ो नो की उनके होती रहे। नल खोलियो हाथ गीला करिया, नल पछो बंद करियो, साबुन लगायो हाथ मसड़िया करिया, जेते नल बंद है पछे थे पछो खोल के हाथ धो लो। तो ए जो है तो बात सुनन में तो छोटी लगी पर अगर गौर कराए तो यह बहुत बड़ी बात है। उई उई बीच में तीन चार मग्गा पानी
1: डोल जाए,
0: बच जा, बच सके अगर आप ये तरीको अपनाओ तो।
1: तो ऐ वाली बात है ने, सच सही है कि दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे गाओ करे गंभीर।
0: तो ऐ बात है ने, छोटी छोटी बात है, वो छोटी छोटी बातों में आप कई बार हर एक अच्छा मैं आदरी जी को पीढ़ी है ना, वो ना वो पौनी री तकलीफ देखी को नहीं।
1: सही है,
0: तो नहीं देखी तो उमरी भी गलती को नहीं, वो पौनी री तकलीफ देखी को नहीं तो वो को नहीं समझ में आवे भाई पौनी कितो कीमती है। पर जिको लोग पौनी री तकलीफ देखी है वो ना चाहिए कि वो बच्चों ने बतावे कि पौनी कितो कीमती है ना। इया दिन रे मेहनत तो देखो, एक दिन नल नहीं आवे तो आ जानी पीढ़ी री नोनी याद आवी री पानी पानी पानी हो जावे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि पानी मारे ढोलन की आदत ज्यादा है।
1: बिल्कुल सही,
0: पानी नहीं है तो की करे। तो ये सो अच्छो है कि आप री आदतों नो
1: बदलो,
0: सुधारो और जितो कम हो सके पानी रो सदुपयोग जरूर करो। उन्हें कम बिल्कुल व्यर्थ पानी ना बिल्कुल मत गुआ। आराम जो आप घनी बार थे देखो तो टीना बहन मैंने देखो गौरे महीनो अपनी महिलाओं इतनी होशियार और इतनी छतरी है कि गौरे महीनो तो थे देखो हमें तो की नालियां बंद बन गई अपर तो शहरों में। फिर गांव में जो हमें जो नावन री जगह होती घरों रे महीने एक नावनी अलग बनोड़ी होती वो सब जना नावता तो वो नावन घर से बाहर वेरी नाली होती। तो वो नाली से पानी गांव में तो घणो पानी आगे ढोलता कोनी तो वो नाली नाली निकाल के वो जगह बागवानी लगा दे, छोटा छोटा पौधा लगा दो तो वो पानी आप जो नावण कपड़ा धो दिन भर पानी जो ढुड़े वो पानी सुवे जो हरियाली हो जाए। और वो हरियाली रहा तो देखो सुख कितना है,
1: घना ही सुख है। गर्मी में तो लोर को ये वैसे दवा सुवावे नहीं तो ठंडो ठंडो बाहर
0: वाली शुद्ध हवा मिले। घनी बार थोड़ो पानी बीजो बाल्टी में ले ले कोई सब्जी और पौधा लगा दो क्योंकि अपन तो बड़ा मोटा मोटा है गौर में ना तो जमीन भी है नी बड़ा है मोटा मोटा और एकदम साफ जग वही आपके घर में देखो सारा हिसाब रखे गाय घर में है तो वो गोबर की खाद बना लो और वो खाद लगा के आपके घरों में ना सब्जियां उगा सको तो उ में पानी आप आड़ो कम में ले सको और थोड़ो पानी भले हुए में अगर उमें आप बीजो पानी सिंचाई रे बगा थोड़ो लो भी तो गलत को नहीं क्योंकि वो पछो आप जमीन न दे रहा हूँ
1: सही
0: पाछो अगर जो आप पानी जमीन ना दे रहा वो पानी तो पाछो अपन कम ही जासे जो हमें आना तो ये तो दिखती बात है कि हमारे गाँव में ना जो ट्यूबवेल ला पड़ा है जो ट्यूबवेल असु घरों में पानी जावे तो ये दिनों में ना ट्यूबवेल मशीनों बढ़ जावे क्योंकि ज्यादा पानी पहुंचे नहीं तो मशीनों बढ़ जावे वो मशीनों बढ़े तो बड़े पानी की सप्लाई कम हो जावे। कहने का मतलब ये है कि जितनो ज्यादा आप पानी ना जमीन से ले सो उतनी पानी की कमी अपरे जोसे।
1: बिल्कुल,
0: और पाछो आप जमीन ना पानी अगर दे रहा हो तो वो पानी सही है आप सिंचाई कर रहा हो आप कोई भी जगह अगर पानी पेड़ लगा रहा हो तो उ अपना ज्यादा सिख फायदो है और वो फायदो अपन खुद ना भी मिल से ना पर टाबरों ना भी जरूर मिल से भावी पीढ़ी। और ये गर्मी में तो सीधी सी बात है कौम का था के जो बेगो बेगो कर और आप रे ओरे रे महीनों खिड़की जेत वे पंखो जेत लगोड़ वे जेत आप रसोई ले ले और कनो जीमे और अपनो राजस्थान रो तो सुरीलो संगीत है जेड़ो के दुनिया में संगीत कौन
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो थे तो मैं तैयारी कर बैठा हूँ गीत भी तो मैं थोर मन है तो मोर को धन है तो सुनाओ देखो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वाटिना मैंने जरूरी संदेश भी थोड़ा सुना दिया और तावड़ो धीमो पड़ जा। देखो अपने तो राजस्थान में हर चीज री राग है, तावड़े न कम करण बगाई भी गीत जुड़ गया और आना सुनन में वास्तव में बढ़िया लगी। पर तावड़ो रुको धीमो पड़ जा गीत में गांव और तावड़े सो भी बचन रा जो अपना था साधन बताया वो करो, पर सबसे ज्यादा बढ़िया है कि आप तावड़े सो बचन बगा ओड़ी चीजों है जो खाउन पीवन में लो ताकि अपन धूप कम लगे, शरीर में जितना ज्यादा पानी उसे उतो अपन गर्मी कम लगे। पर कई बार अनु मैंने था देखो कि तावड़े में अगे हूं तो हिजो सुनियो के ओरे अड़ी गर्मी है के हिजो हो जावे को हिजो क्यों हूं तो के पानी कम पीस तो तो हमें वो हिजा तो हो गया कम क्योंकि सुविधाओं बढ़ गई है पर हमें गैसो बढ़ गई पेट में।
2: सही
1: आए दिन देखो हर लुगाई रहे 120 लुगाई में बात करो अरे अड़ी गैस हुई अरे अड़ी गैस तो मनो ये चीज समझ में को नहीं आ रही टीना बहन के इतनी समस्या क्यों हो रही है। अपन खुद ना ये बात में सोचना चाहिए।
2: सही बात है
1: के हमें गैस की गोली ले लो या अपना जो घरेलू जो इलाज
2: है
1: अजमेरी फकी ले लो या जीरे आजकल तो कोई कहे जीरे री भी फकी लो इसे ठीक हो वो तो हो सकते हूँ तो बचो लिया ये चीज हूँ। पर घनी बार है अभी के हमें जो लुगाए रो खान पान उठन बैठन जो दिनचर्या है उरी वजह सु या एक गैस जो रोटी खाए सीधा आप सो गया हूँ जितना जहाँ तक मैं सोचने वाली बात है कि रोटी खाई भी सोता तो उरी वजह सु हो सके गैस री जो बीमारी शुरू हुई है नी तो थोड़ा हिसाब सु ये गैस नो खत्म करन बगा ए जो छोटा छोटा इलाज करना सही है जड़ सु खत्म करना सही है।
2: जड़ सु देखो कोई भी चीज नो अगर खत्म करना है तो जड़ सु ही करना चाहिए ने क्योंकि जब आप कोई चीज मतलब आप कोई मर्ज हो जावे कोई आदमी ना तो आप की चाहवे कि वो जड़ सु खत्म हो ताकि पछो ही नहीं आवे ने तो इरे वास्ते ए भी अड़ी बीमारी है जो कोनो बहुत ही तेजी सु फैल रही है तो इरे वास्ते सबसे बढ़िया है कि जो आना तो आप शुरुआत ही करी कि आप ना सुबह बैगो उठना है। देखो सुबह बैगो तो ही जी उठना चाहिए पर आप उन धर्म सु जोड़ के पुरुषोत्तम मास है तो बैगा उठो नहाओ दो बैसाख है तो बैगा नहाओ बैगा नासो दूसो तो बैगा उठसो तो मैं थानो पहले ही क्यों योग भी जो करसो योग करसो तो थारो शरीर वैसे ही निरोग हो रहे तो वे सो थारे शुरुआत जब थारे दिन भी अच्छी हो से ने तो थारो पूरो सुबह बैगा उठसो तो पानी भी पूरो पीत से थारो नाश्तो भी टाइम से रो से दोपहर रो खानो भी टाइम से रो से रात रो भोजन भी समय सो से तो जब अपन सब काम समय सो करे ने तो अपन ये गैस एसिडिटी सो काफी हद तक राहत भी मिले।
1: लो ए तो बड़ी लंबी चौड़ी चिंता वाली बात है तो मिनटों में सुलझा दी ए तो टीना बहन मतलब सरल चीज है सरल है लेकिन बहुत बढ़िया है।
2: सही
1: अगर बेगा उठ के थे ये तरीके से आप जीवन न तरीके से बना लो आप रूटीन तो ये जो गैस जड़ी चीज है नी ये वास्तव में जड़ सु खत्म हो जावे और इन रोज रोज बचे न तो कोई सोमो मिले तो भली बात तो नहीं करो न तो गैस हो ही है। अरे सोमलो आदमी कोई आप थो सु बात करनी चाहे वो तो बात तो भूल जावे और आप रोना शुरू कर दो शरीर दुख रहा है मौजे तो ए दुख रहे कमन मतलब है कि शरीर हमेशा पहलो सुख निरोगी काया हूँ हमेशा को तो निरोग हो जितो शरीर हो तो बढ़िया बात है और ये तो थोड़ा सरल तरीको बता दियो तो ये तरीके ना अपन बहनो जरूर अपना से और स्वस्थ और खुश रह से अपनी पणियारी हमें कह रही है कि हमें थोड़ी वक्त पूरी हो गई है तो बहनों सुख सीख ले सा और कर सा
2: राम राम,
1: राम, राम, राम।

ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM 101.8 MHz पर। दोपहर के 2 बजे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, और 2:15 पर दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण

0: महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: If you heard me earlier,
4: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
3: ज्योग्राफी और हिस्ट्री और
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

0: इनमें से कई प्रमाण पत्र दुआरे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: आपसे कुछ देर में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिकोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरुद्दीन और गोह सेफेई को हराया। PV सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच

0: चेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का यही जैसलमेर केंद्र है, एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप जुड़े रहेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों के साथ। प्रसारण होगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डे के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला कालजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

0: काहे की फिकर,
1: ओ करोगे कि कब मेरे दिल में घर बोलो जादू गला।
0: हम तो कभी के हुए तेरे दिल भर, अब काहे की फिकर।

0: पिया मौज मना लिखो आओ जीवन बिता ले पिया मौज मना ले मिले जुल के
1: जरा हमको।

0: लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाजों में प्यार बरसाता ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज।
1: ठंडी ठंडी हवा खाने राजा गया गांव

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच पे कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, इस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को हमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, शुरू में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

गया। बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो ऐ गुलनार जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ हो गया। बोलो बोलो बोलो

ए गौरी हसीना, अरे मुश्किल हुआ जीना बहारों के शहर में, ओ मेरी रानी हाय हाय हाय हाय। तुम ही कुछ बताओ ना इतना सताओ, पाओ तले देखो हमारा दिल ना हो। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया, बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो ए गुलनार ए गुलनार, जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया।

पूछा और किरणों से भी पूछा, सुनता नहीं कोई हमारी बातें, हाय हाय हाय हाय। फूलों से भी पूछा और कलियों से भी पूछा, कोई कुछ ना बोला और मैं तो लुट गया। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ हो गया। बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो ऐ गुलनार ऐ गुलनार, जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया। बोलो बोलो बोलो बोलो।

सागर पे जवानी और लहरें भी मस्तानी घेरे मुझे देखो इशारा करके हाय गालों के उजाले अरे जल गए जलने वाले परियों के नगर में लो मैं तो आफसा जानो क्या मेरा दिल अब कहाँ हो गया बोलो बोलो बोलो बोलो

बोलो कुछ तो बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो कुछ।

से नगमे मोहब्बत के गा रहा हूँ। ऐ हसीनो नाजनीनो, मैं दिल हथेली लेके आ रहा हूँ।

नहीं हूँ, मैं हूँ मत वाला, एक दिल वाला, साथ देगा कोई, मैं बुला रहा हूँ। ऐ हसीनों नाजनीनों, मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ। ऐ हसीनो बाबा बदाशु पेत बेनु मैं शोरा।

चाचा चा जिंदाबाद। इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जय किशन ने।

जग से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है।

हम जब भी नजर आए मुंह फेर लिया है तुमने, हम जब भी नजर आए हम नहीं पहचाना, बस इतनी शिकायत।

जाते हो पर हम भी बन जाते हो हम दम भी। ऐसा पिए मैं खाना छोला भी हो शबनम भी। ऐसा पिए मैं खाना छोला भी हो शबनम भी। खाली मेरा बेमाना बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है नरगिस।

0: हर रंग कयामत है, हर ढंग शरारत है। दिल तोड़ के चल देना ये हुस्न की आदत है। दिल तोड़ के चल देना ये हुस्न की आदत है। आता नहीं बहलाना बस इतनी शिकायत है, इतनी शिकायत है। नरगिस मस्ताना बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है। समझा हमें बेगाना बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है। नरगिस
1: ये महकती के लगती शिकायत आरजू फिल्म से हसरत जयपुरी की लिखे हुए इस गीत में आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदिनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत रचा है सचिन देव बर्मन ने।

पन घट पे बैठूं मैं, राधा दीवानी जाके पन घट पे बैठूं, बिन जल लिए चलिया, बिन जल लिए चलिया राधा दीवानी मोरे।

0: बतिया तुझे मिलना ही जुल्म भया रे जुड़ी जब से तू आया मेरे।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आज बस यहीं तक, दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
2: मन चाहेगी
3: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म डाक के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनाथ गांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दा कई गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है। सुनना चाहते हैं रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रचक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साफू।

फासलों की खुशबुओं में महकती नजदीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप बुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में।

0: क्या राज है,
1: कोई तो राज है।
0: अरे आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप, चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब। कहो क्या बात है,
1: कोई तो बात है।
0: कहो क्या राज है।

आपने सुना एम जी हशमत के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर।

अब अगला मनचाहा गीत बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ। सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कौंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

0: चाहेगी।
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। शकुंतला रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रड्डी।

0: इस हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता ना करें महाराज, उसी क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज, ये धड़ाका ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को।
2: ये नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन, इस पर
1: दया कीजिए।
0: अरे, ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी है महाराज।
0: रथ को रोको साथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए है राजन, मेरे अपराधों को मारने के लिए नहीं।
3: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन,
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधारे है। लीजिए, मैंने अपना बाण लौटा लिया।
4: पुरो वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
3: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूं?
3: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंग्रव है
4: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
3: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है। यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहाँ पधार कर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
3: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर
3: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
0: हाँ,
3: इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला
3: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
3: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है, किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
4: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी संविदा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
4: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यही रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा दो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी

0: भुजा क्यों फड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखो। क्या रूप, क्या सौंदर्य है! आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहनों की महक तो कुछ भी नहीं। वन लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यही छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
1: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
2: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
1: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला। तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
2: लताएं भी रूठती हैं क्या?
1: हाँ, अगर उन्हें आत्मीय की तरह पाला जाए तो रूठती भी है और प्रसन्न भी होती है, समझी?
2: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
1: क्या समझी है तू?
2: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
1: वो कैसे?
2: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं। ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या, शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से।
1: अरे अनुसुईया, सरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांधी है इस प्रियंवदा ने।
2: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
1: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
2: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
1: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूं?
2: तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
1: परिहास ना कर,
2: अच्छा नहीं करती।
1: बता। देख वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी बड़ी हो गई।
2: नहीं तेरी तरह
1: फिर परिहास।
2: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
1: हाँ बता।
2: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
1: थक, तेरा तो सिर घूम गया है।
2: सच, मैंने अपने कानों से सुना है।
1: अच्छा,
2: पिता कर्ण कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
1: अच्छा,
2: तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
1: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
3: अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे।
1: अरे अरे मेरा पीछा छोड़,
3: भाग,
1: अरे भाग ना,
3: भगाओ ना इसे। क्या
2: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
1: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
3: हाँ
2: वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
3: अरे बचाओ, बचाओ ना।
0: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए। पृथ्वी पर पुरवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
2: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था, आपके आते ही भाग भी गया। आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजी ना,
1: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
0: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
2: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य, इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
0: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठिए ना आप लोग भी।
1: ना तुम लोग बैठो, मैं भी।
2: अब बैठ भी जाओ।

0: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
1: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
2: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
3: मैं अब क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ। पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूँ।
1: आज यदि पिता कर्ण यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
3: और ही ढंग से?
2: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
0: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
3: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
1: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
2: बहुत मीठा है इसका गला,
1: करती रहती है सबका भला,
2: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
1: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है, कुलपति कर्ण की सबसे लाडली बिटिया है।
3: किंतु कुलपति कर्ण तो शाश्वत ब्रह्मचारी है।
1: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
3: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
2: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन ढूंढता हुआ दिखाई देने लगा।
3: फिर
2: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया। मेनका के उस मादक रूप को देखकर
3: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
2: क्या आर्य?
3: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
1: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य, पिता कर्ण तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
0: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
1: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
2: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
3: वृक्षों को सींचने का ऋण?
1: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
2: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
3: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
1: आप
3: ये लीजिए।
1: अंगूठी? किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है, आपके पास ये अंगूठी?
3: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
1: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
2: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
3: मैं आभारी हूँ।
4: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं, सावधान सावधान।
3: लगता है मेरी खोज के लगने से ही तपोवन में खुश आए।
2: हे भगवान, अब क्या होगा?
4: सावधान, वन के जीव तत्वों के दान के रूप में एक सुंदर हाथी भी उत्पाद बचाता आ रहा है।
1: यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
2: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
3: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
2: चलो चलो शकुंतला। हाँ हाँ चलो
3: चल, मैं भी सैनिकों को देखूं, किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यही स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरूं, प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो, भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, गधा, घोड़ा, बैल, मक्खी, मच्छर, कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है, शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है, आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं?
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे, अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिया का ये रूप तो हम मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूँ माधव्य, अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूँ।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: हा? वो कैसे?
1: तो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
2: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
2: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निलमेश क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
2: विशेष बात?
1: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
2: अप्सरा की कोख से? और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
3: महाराज की जय हो, दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
3: जो आज्ञा महाराज।
4: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
5: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
5: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कर्म इस समय यहाँ नहीं है, उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं यार। अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक।
3: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहाँ ले आए।
3: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूं।
3: आर्य की जय हो। महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
3: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
3: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
2: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
2: आज से चार दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा, क्या करूं कैसे जाऊं कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
5: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव्य।
0: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
1: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
5: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है, उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझाकर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
5: ठीक है,
2: महाराज दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
1: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
0: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
2: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहाँ तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूँ, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
0: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा।
1: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: जाओ युवराज।

0: प्यारी पवन चल रही है, अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवता, तभी से इसकी ये दशा हो गई है। इसी से पूछकर देखे, हाँ यही उचित रहेगा। शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवता, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो। इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं, तभी से
2: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
0: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
2: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
1: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
0: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
0: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
0: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
0: हाँ ही, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: मुझे एक उपाय सोचा है।
0: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं,
0: फिर
2: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
0: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
1: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
0: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
1: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
0: क्या शकुंतला,
1: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
0: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
2: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
1: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: विविध भारती
1: साउंड कैमरा एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा आला बाई पाडाला पिकलाय आंबा हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: ओ, ओ, ओ पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार मेरे सब विविध भारतीय सुनने वालों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
2: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
3: जरूर,
2: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशन आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
3: अन्ना जी के सिवा, वसंत देसाई के सिवा।
2: अच्छा,
3: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं।
2: अच्छा,
3: मैंने
2: मंच पर आपने मंच पर दी।
3: अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
2: जी जी,
3: उनका नाम था।
2: हाँ, हाँ।
3: तो हम शो करते षणमुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग।
2: जी,
3: तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के।
2: जी जी जी।
3: यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया।
2: हाँ, हाँ।
3: तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कोई,
2: हाँ।
3: तो आपके घर में नहीं आई।
2: हाँ।
3: तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना,
2: हाँ।
3: ऐसे गाओ, चलेगा। अन्ना जी नहीं,
2: हाँ।
3: नहीं नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं। अच्छा। तो नहीं, तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था
2: हमारा। अन्ना जी मतलब
3: श्री रामचंद्र जी। तो षणमुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम में तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पर करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे।
2: अच्छा।
3: तो थोड़ी देर अन्ना जी ने सहन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
2: अच्छा।
3: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दिया, फिर वो लोग चुप बैठे।
2: अच्छा।
3: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है।
2: हाँ।
3: नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
2: जी जी।
3: वो पूरा रिकॉर्ड भी, रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एच एनवी में।
2: अच्छा।
3: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
2: ओके।
3: एक समय काली पास सुर है, तो खर्च के जो सुर होते हैं, आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने ज्यादा ऊंचा ऊंचे सुर में गाना चाहती थी, क्योंकि तब तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल। नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना। वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
2: जी जी।
3: बट ये दोनों में फर्क था, वसंत जी और अन्ना जी।
2: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है, उसमें से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थी
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों से,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये तो समझ में आता है। कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ। देखिए, आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, बसंत जी का म्यूजिक था
0: जी,
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाल। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनके दोनों की जुगलबंदी, वो दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आखिर करके चली गई।
0: अच्छा।
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा, तो मैं बहुत दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका असल स्टूडियो था शशांक लालचंद चारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ।
0: हाँ।
1: हमारा तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया।
0: अच्छा।
1: लेकिन उनको मालूम था उस संजय को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे ये कहा था, जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
0: अच्छा।
1: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा आपकी हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था, वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा। आशा जी की बात निकली है, तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से, ऑफ कोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल
1: हर तरह का गाना उनका, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने
0: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नैयर साहब का,
1: नैयर साहब का,
0: क्या बात क्या बात,
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी। लेकिन हर गाना उनका बहुत,
0: ये गाना सुन लिया।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा खुद का
0: जी, मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए, और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अंबा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ
0: जी,
1: पुराना कोई फिल्म का, और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ, दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ,
1: तो लोग एकदम ऐसे, अब आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको ज्यादा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो,
0: अच्छा,
1: अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे, और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा,
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था, मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्ता जी की लावणी है ना पाड़ा पिकला हम वो गाइए, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं वो मेरी है, तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाने इतने गुजराती में, गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कन्नड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहां के लोकल लोग बहुत खुश होते थे,
0: अच्छा,
1: उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना,
0: हाँ,
1: तो मस्त उनको मजा आता था सुनने। उसका एक मंदसौर का किस्सा है ना, आपको
0: हाँ,
1: बताया
0: कि बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता मेरे पीछे,
0: हाँ,
1: बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता,
0: अच्छा,
1: था बहुत बड़ा कटआउट बनाया था, तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा का, पत्रे का बनाया था
0: जी, जी, जी।
1: मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दत्ता और सुनहरी यादव, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका बाबा आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था, तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है,
0: हाँ,
1: मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड उसके हम साइक्लोरामा डालते थे,
0: अच्छा,
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
0: घूम रहा,
1: ऐसा
0: अच्छा,
1: लगता
0: अच्छा,
1: था
0: अच्छा।
1: तो ऐसा भास होता था लोगों को, तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
0: हाँ,
1: मेरी मेरी तो जहां तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आप अच्छा गाने की, बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ,
0: अच्छा,
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था,
0: हाँ,
1: कि उसको रिकॉर्ड जैसा
0: क्या बात,
1: लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया तुमको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने ऐसा गाना, फिर वो शांत हो गया।
0: श्रोताओं की बात निकली है तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गाँव में शो किए हैं और विदेशों में भी किए हैं,
1: जी,
0: हर शहर का श्रोता अलग होता है,
1: बिल्कुल
0: है?
1: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं,
0: हाँ,
1: लेकिन अनुभव से,
0: हाँ,
1: आपको मालूम होना चाहिए,
0: हाँ,
1: कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं, एक साल लगभग पांच पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हाँ करके सामने सामने ये करते हैं,
0: अच्छा, अच्छा,
1: फिर दो गाने के बाद ये कोडा सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने हम समझना चाहिए, वो सिखा के नहीं आती,
0: अच्छा,
1: और जहां तक हम पहली बार भी गए,
0: हाँ,
1: किसी शहर में किसी, हाँ, गांव में छोटे से गांव में भी,
0: जी, जी,
1: तो पहले दो गाने में अंदर रहता है कि आज क्या चाहिए लोगों को,
0: हो,
1: किस प्रकार के गाने चाहिए,
0: अच्छा,
1: तो वो होने से ज्यादा अच्छा होता है,
0: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहां के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है
1: फर्क? नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे,
0: अच्छा,
1: ये है अच्छा,
0: हाँ, हाँ,
1: क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं,
0: हाँ, हाँ,
1: तो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे, पहला प्रमिला जी अच्छे गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
0: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
1: वो रफी साहब का गाना, एक दो गाना है, सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, हाँ, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे,
0: जी, जी,
1: तो वो आगे आके उनको उसको एक मतलब ना, मैं बताती हूँ आपको,
0: हाँ, हाँ,
1: रफी साहब पहले शुरू करते थे,
0: जी,

0: भी रहेगा, जानी इसकी, और परसों भी रहेगा और तरसों भी। क्या जानी भाई आप तो लगे पूना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते।
1: जी जी जी, तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।

इत बिजली सी चमक जाती है मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था आज भी है आज

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा,
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है,
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी, जी।
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं?
0: हाँ,
1: ये होता
0: हाँ,
1: है हाँ। ये ठपका दोष आता है इसलिए वो अगर होता था, लेकिन मैं इसमें खुश थी। मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे दाद मिलती थी लोगों की, तो मैं खुश थी, मैं उसमें ही खुश थी। और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम देने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए। ऑर्केस्ट्रा
0: जी, जी।
1: एक पुणे के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धांगर धींगा ये वो डांस वो ये सब नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो भी लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मोरक्षा को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है। तो वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए अच्छी है, दूसरा कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
0: शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता
1: हो
0: तो सवाल ही नहीं, बहुत सुंदर होता है। क्या ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगे कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग है और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मिले, लेकिन अभी ज्यादा नाम मुझे याद नहीं।
0: प्राइवेट शोज भी होते,
1: प्राइवेट शोज भी होते थे
0: कंपनी के लिए,
1: किसी कंपनी के लिए बहुत शो हुए।
0: अच्छा,
1: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे लिए। नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट किया।
0: जी जी प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए हैं।
1: हाँ जी।
0: सबका अपना अलग अंदाज होता है, अपना स्टाइल होता है।
1: है
0: ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया। सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और उनकी विशेषता होती है। फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हो गए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी, शमशाद बेगम जी के, वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ?
1: इन कंपोजिशंस
0: में ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा,
1: अभी आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है।
0: अच्छा,
1: मेरी राय होगी वो, शायद गलत भी हो सकते हैं, लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें अगर जो म्यूजिक भी था बीच का, वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है ये ऐसा चिल्लाते थे। जरा भी मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ, मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है, उन्होंने शुरुआत करी मेरे शो से की थी, तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधे का नाचे गाने, तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा।

0: तबले में नहीं गाई थी, हाँ आमिर खान साहब की गाई हुई है मुझे। और लेकिन रफी साहब गा नहीं सकते ऐसा नहीं था, हाँ। लेकिन तो कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी की शायद वो ताने ली है, मुकरी तो उतना भी उसको मालूम पड़ा है। म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए
1: तो श्रोताओं को समझ में आ
0: जाता है, बराबर उनको ए करके चिल्ला देते वहां से,
1: क्योंकि श्रोता जो है दर्शक जो है वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार सुना है,
0: उनके दिमाग में
1: वैसा के वैसा।
0: अभी ये गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टरा टरा टरा, वो आना ही चाहिए, मैं तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों को
1: जी। ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं
0: जी,
1: उनकी नजर से एक हाँ। सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है,
0: मिलता नहीं सही बात,
1: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा कर अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी हाँ। तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसे होनी चाहिए?
0: तो रिहर्सल,
1: हाँ
0: बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20-25 शो हुआ करते थे, वही और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए,
1: नहीं
0: तो ये ढोलकी वाला आया कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का। तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था,
1: हाँ।
0: सालों साल तक
1: जी।
0: अभी मैंने 2023 को एक शो किया,
1: हाँ।
0: बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू शो करना अभी तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज, हाँ। 4 साल से,
1: हाँ, हाँ।
0: तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करे, तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
1: अच्छा
0: शो किया। तो एक तो बहुत सारी चीजें नहीं थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी, लेकिन काल के हिसाब से जो बदली हो जाएगा
1: जी।
0: तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का उसमें एक रिहर्सल
1: हाँ,
0: और शो
1: जी
0: बस, दूसरी रिहर्सल नहीं, हाँ एक ही रिहर्सल, वो मुझे कभी मालूम पड़ी होगा जो, तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी 2-3 थे म्यूजिशियंस,
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: संजय मराठे करके है, तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
1: जी।
0: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ मुझे शो करना है, तो ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी,
1: हाँ।
0: लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता जाता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल, तो एक रिहर्सल और शो
1: जी,
0: लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको शो को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मनके बोलूंगी, विनय मनके,
1: विनय
0: मनके
1: जी जी। मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मानके जी की आवाज हम सुनते हैं
0: जी, जी।
1: तो
0: उसको जिंगल किंग ही बोलती थी, हाँ, बहुत सारे जिंगल गाए उसने, और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है स्टेज, हाँ, परफॉर्म होता है वो था, बहुत सारे हल्की बुल्की बातें भी करने का बीच में
1: अच्छा।
0: मतलब ऐसे,
1: हाँ, हाँ,
0: किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे नॉट दैट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के,
1: अच्छा।
0: तो ये कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा, फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा
1: बहुत अच्छे।
0: फिर एक गाना था अन्ना जी का, बोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की नारी, नए जमाने की नारी, फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली,
1: हाँ।
0: तो ये बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों को भी मजा,
1: मस्ती के मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा रहते थे।

0: नखरे बड़े मोटे मोटे
1: नाम बड़े।

0: ना तुम डरे ना हम छोटे
1: आप बड़े दर्शन छोटे दर्शन छोटे सूरत दिल के छोटे नाम बड़े दर्शन छोटे दर्शन छोटे सूरत दिल के छोटे नाम बड़े दर्शन छोटे
2: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे सीख थे
3: जी,
2: लेकिन विनय जो अकेला संभालता शो कोई भी सिंगर का गाना वो गाता मुकेश जी का बोलो रफी साहब का बोलो किशोर कुमार जी का बोलो अच्छे गाते थे उसको उसे सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ लेकिन उसकी जातिया उसकी आवाज में सब
3: जी,
2: था।
3: जी,
2: अच्छा गाता
3: प्रमिला जी अब गाना सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें उनकी बात करते हैं कभी लता जी से मिलने का मौका मिला
2: मिला मतलब मैंने क्या हुआ मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल
3: जी जी
2: हर साल तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए पड़वा के शो वसंतला पाटिल शंकर राव चौहान और जो कुछ विराट शाह देशमुख सुशील कुमार जी शिंदे सब आगे वो बड़ा शो हुआ करता था और तो मैं किसी को बुलाती थी या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी उनके घर में गई थी प्रभु कुंज में तो उसके सामने बैठी थी तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली सामने दर्शन हुआ साक्षात तो मैंने बता दिया मुझे बोली कि क्यों आपने कैसे आना किया कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला
3: अच्छा
2: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे लेकिन वो भारगाव जाने वाली थी
3: अच्छा।
2: नहीं आई फिर मुझे उन्होंने पूछते है कि कसं भाव तुम्ही असे प्रोग्राम करता है उड़े प्रवास करायचा परत गायला उभा राहायचं कसं करता नहीं अभी आदत हो गई है हो जाता है मतलब उसने उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं महीने में इतने शो होते हैं पूरा मालूम
3: था क्या अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे
2: उनका एक सरदार फिल्म का गीत है
3: हाँ
2: वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ाला पिकलाया, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी।
1: हाँ हाँ।
0: या उसका शो में शामिल होना
1: बहुत ही जरूरी था। मस्ट।
0: और भी एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे,
1: जरूर,
0: और फिर लावणी की भी बात करेंगे।
1: हो मसला बघून तुम्ही जाणा हो पाहुण, नमुना बघून तुम्ही जाणा हो पाहुण, हो पाहुण पाहुण पाहुण जरा थांबा, हो पाहुण जरा थांबा, पडाला पिकलाय आंबा।

0: पाडाला पिकलाय आंबा, आणाबाई पाडाला पिकलाय आंबा. मसला बघून तुम्ही जाणा हो पाहुण, नमुना बघून तुम्ही जाणा हो पाहुण, हो पाहुण पाहुण पाहुण जरा थांबा, हो पाहुण जरा थांबा. हार घे पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाई पाडाला पिकलाय आंबा, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा. कुछ अलग अलग वरायटी होती ती, पर फिर ये आंबा, ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी.
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन, तो मैं बोले अभी अगली बार मैं गाऊंगी तो बहुत थक गई हूँ तो पाडाल पिला मैं बोलूंगी, अम्बा आप बोलेंगे.
1: अच्छा.
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलका, अरे क्या कर रहे हो आप, अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए. इतना जोर से, फिर जोर से एकदम जोर जोर लगा के अम्बा आता था, सामने से मजा आता था. उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया, उनको भी शायद.
1: प्रमिला जी, आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आप उन्हें जरूर सुनाया करती
0: गाती थी. हाँ,
1: अपने
0: कनाडा गाना सुना सुनाती हूँ.
1: जी जी जरूर.
0: मेरी लड़की बैठे ना मतलब खुश हो जाएंगे.

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि क्या,
1: हाँ रे बाप रे, गुजरात ही तो वो एक गाना था।
0: हाँ
1: छेला जी रे मारे हट पाटल।

0: ये गाना बहुत उधर किया था। और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे।
1: हाँ।
0: तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब लोग काठियावाड़ी ने वो झिबला पहनते हैं,
1: हाँ,
0: शॉर्ट वो पहन वाले बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रखे, तो दो गाने पुराने हो गए। ए प्रेमिला बेन, नवो पिक्चर लो गाएं गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ। तो मैंने उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया। और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें, तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए।

0: तुमने भी जवाब देना या कुछ
1: जी बिल्कुल
0: बोलना।
1: बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई, उस वक्त पहली
0: जी
1: बार आपने जो गानों की फेहरिस्त बनाई
0: हाँ
1: थी,
0: जी
1: लिस्ट
0: हाँ
1: बनाई
0: जी हाँ
1: होगी,
0: जी
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: और तब की जो उस शो की जो लिस्ट थी।
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें जो
1: अच्छा
0: लोग पसंद करते थे,
1: अच्छा
0: हमारे लिए नहीं।
1: हाँ
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर उधर,
1: हाँ
0: लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद की
1: हाँ
0: पहले से थे,
1: अच्छा
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के
1: हाँ
0: लिए,
1: हाँ
0: लेकिन एक एक अवारी जो मैंने बोली,
1: जी
0: निगाहें मिलाने को जी
1: जी
0: चाहता है, पेपाड़ा लपेटला अम्मा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो
1: हाँ
0: लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी। उनके
1: अच्छा
0: गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वो वही गाने चाहिए लोगों
1: वाह
0: को।
1: वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: मजा आता।
1: बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन
0: हाँ जी
1: करके।
0: हाँ
1: प्रमिला
0: जी
1: जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए, तो वो कौन सा
0: ओहो
1: गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये कर्म है
1: करम।
0: कि आज आप यहाँ पर
1: हरी और मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे, और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिसने आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: आलम चरगी कचर गए अपना बॉम्बे टॉकीज टॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और सहकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने के

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

युवानी सुनने वाले सभी युवा साथियों को क्षितिज शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के समय में पर्यावरण संरक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। हमारे जीवन के लिए पेड़ और पौधे अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे हमें स्वच्छ हवा, छाया और जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ का नारा हमें ये संदेश देता है कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और हमेशा नए पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ न केवल हमें ताजी हवा देते हैं बल्कि वे जलवायु को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और वर्षा जल को संचित करते हैं। इसके अलावा पेड़ अनेक जीव जंतुओं का आवास भी होते हैं, जिससे कि जैव विविधता बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण पेड़ों की संख्या में कमी आ रही है और जिससे हमारा पर्यावरण भी असंतुलित हो रहा है। इसीलिए हमें पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है, साथ ही साथ उनकी सुरक्षा भी हमें करनी होगी। तो साथियों, हम सभी मिलकर पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें तो हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकते हैं। स्कूलों में, घरों में और सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाना चाहिए और लोगों को इसके महत्व के बारे में भी हमें जागरूक करना चाहिए कि हमें पेड़ लगाने की क्यों आवश्यकता है। इससे न केवल हमारी पृथ्वी हरी भरी रहेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी एक स्वस्थ वातावरण में जीवन यापन कर सकेंगी। क्योंकि साथियों, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ केवल एक नारा नहीं बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जो हमें अपने और अपने आने वाले कल के लिए निभानी होगी, क्योंकि पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर इस पृथ्वी को हरा भरा करना होगा, तभी हम हमारे इस पर्यावरण को बचा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं जिससे मनुष्य और सभी जीवित जीव उपभोग करते हैं, और बिना पेड़ों के पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी संभव नहीं होगा। साथियों, पेड़ जो है वो खाद्य श्रृंखला की रीढ़ है। कई पक्षियों और जानवरों को आश्रय और भोजन प्रदान करते हैं। इसके अलावा पेड़ एक मूल्यवान लकड़ी संसाधन के रूप में काम करके कई आर्थिक लाभ भी प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग निर्माण, फर्नीचर और कागज उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा वानिकी क्षेत्र दुनिया भर में लाखों व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी ये पेड़ पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। वातावरण में छोड़े गए अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं, जिससे हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है। और इसके अलावा पेड़ जल चक्र को बनाए रखने, मिट्टी के कटाव को रोकने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी व्यापक जड़ प्रणालियां प्राकृतिक फिल्टर के रूप में काम करती है, प्रदूषकों को भूजल आपूर्ति में प्रवेश करने से रोकती है और पानी की गुणवत्ता बनाए रखती है। साथ ही दोस्तों, वन वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वर्षा को बढ़ावा देकर जल चक्र को विनियमित करने में भी मदद करते हैं। इसीलिए साथियों, पेड़ों को बचाना पृथ्वी के सभी निवासियों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक अल्पविराम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, पेड़ जिन्हें अक्सर हम जीवन का प्रतीक मानते हैं, हमें कई परिस्थिति की सामाजिक और आर्थिक लाभ भी इनसे मिलते हैं। स्वच्छ हवा से लेकर अनगिनत प्रजातियों को आवास देने तक भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में ये पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर हमें हमारे पर्यावरण को बचाना है तो हमें इन पेड़ों को बचाना होगा, क्योंकि बढ़ते शहरीकरण के कारण हम पेड़ों की संख्या में तेजी से गिरावट देख रहे हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम पेड़ों के मूल्य को पहचानें और उन्हें बचाने के लिए सक्रिय उपाय करें और पेड़ों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएं। साथियों, पेड़ों को बचाने का प्राथमिक कारण हमारी शुद्ध हवा है, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए जिस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही मिलती। ये पेड़ प्राकृतिक वायु फिल्टर के रूप में काम करते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन जैसी प्राणवायु गैस देते हैं। एक पूर्ण विकसित पेड़ एक वर्ष में 10 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकता है। पेड़ों की सुरक्षा करके हम बेहतर वायु गुणवत्ता भी सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियों की संभावना को भी कम किया जा सकता है। तो साथियों, जैसा आपने पहले भी डिस्कस किया कि पेड़ केवल हवा को ही स्वच्छ नहीं करते बल्कि ये जल चक्र को भी नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्राकृतिक स्पंज के रूप में काम करते हैं, वर्षा जल को अवशोषित करते हैं, बाढ़ के खतरे को कम करते हैं और इनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद करती है और इससे हमारी जो उपजाऊ भूमि है वो संरक्षित रहती है। जलवायु परिवर्तन के सामने पेड़ों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पेड़ कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम किया जाता है। साथियों, पेड़ों के संरक्षण से सकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी पड़ते हैं। पेड़ हमारे परिवेश के सौंदर्य को बढ़ाने, हमारे समुदायों को अधिक आकर्षक बनाने और कल्याण की भावना प्रदान करने के लिए भी जाने जाते हैं। ये देखा गया है कि पेड़ों वाली हरी भरी जगह तनाव के स्तर को कम करती है और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करती है। तो साथियों, पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ का संरक्षण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आर्थिक रूप से भी पेड़ हमें लकड़ी, कागज और पर्यटन जैसे विभिन्न उद्योगों में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और वनों का सतत प्रबंधन न केवल कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। तो साथियों, पेड़ों को संरक्षित करने के लिए उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ों के संरक्षण को प्राथमिकता दें और उनकी सुरक्षा के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल हों, और इन कार्यों को करके हम अपने साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। तो साथियों, अभी वक्त हो चला है मनोरंजन का, तो आइए आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म अपने से, ये टाइटल सॉन्ग। आवाज थी जसविंदर नरूला, जयेश गांधी और सोनू निगम की। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था हिमेश रेशमिया का। दोस्तों अब बात करते हैं योग की। एक स्वस्थ जीवन के लिए योग बहुत जरूरी है। योग एक ऐसा अनुपम साधन है जो न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम बहुत से तनाव और व्यस्तता का सामना करते हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है और योग की मदद से हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रख सकते हैं। साथियों योग का नियमित अभ्यास करने से शारीरिक मजबूती बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और ऊर्जा का संचार होता है। योगासनों से शरीर के अंग सक्रिय और संतुलित रहते हैं जिससे रक्त संचार सुचारू होता है और इसके अलावा प्राणायाम और ध्यान से मन शांत होता है, साथ ही भावनात्मक तनाव भी कम होता है। दोस्तों योग न केवल तनाव, चिंता और डिप्रेशन को दूर करता है बल्कि आत्मविश्वास और सहनशीलता भी बढ़ाता है। स्वस्थ जीवन के लिए हमें योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। योग अपनाना आसान है और इसके लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता भी नहीं होती। थोड़ा सा समय निकालकर योग करना हमें निरोगी बनाए रखता है और जीवन को खुशहाल बनाता है। इसीलिए स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क के लिए योग हमारा सबसे बड़ा साथी है। साथियों योग न केवल स्वस्थ जीवन की कुंजी है बल्कि ये हमें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की ताकत भी देता है। योग से ही हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से पूर्ण बन सकते हैं। तो साथियों योग के बारे में ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे और आपको बताएंगे क्या है योग करने के लाभ, लेकिन अभी लेते हैं एक अल्पविराम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, हालांकि योग के स्वास्थ्य लाभों का विकास

भारत में हजारों साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी कई लोग योग से अछूते रहे हैं। हमारे देश में योग दिवस भी 21 जून को मनाने की पहल हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी और उसके बाद से इस दिवस को पूरे विश्व में मनाया जाता है। योग न केवल आपको अच्छा महसूस कराता है बल्कि तुरंत संतुष्टि और स्थायी बदलाव भी देता है। उसके लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से योग करते रहें, क्योंकि इससे जो आपको लाभ होता है वो एक दो दिन में नहीं होता। इसके लिए आपको इससे नियमित रूप से कई दिनों तक करना होता है। धीरे धीरे आपको अपने शरीर में इस बदलाव दिखने लगते हैं और योग के जो लाभ हैं वो आपको मिलने लगते हैं। योग से आपके शरीर में लचीलापन तो आता ही है, साथ ही इसके अन्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी हैं जो कि आपको आश्चर्यचकित भी कर सकते हैं। साथियों, आइए जानते हैं योग के शारीरिक लाभ के बारे में। दोस्तों, योगासनों में आपको अपने शरीर का भार नए तरीकों से संभालना पड़ता है, जैसे एक पैर पर संतुलन बनाना, हाथों से सहारा लेना, अधोमुख सुनासन, अग्रमुख सुनासन और तख्तासन जैसे आसन ऊपरी शरीर की ताकत को बढ़ाते हैं। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, खासकर अगर आप उन्हें कुछ देर तक रोक सकते हैं, तो आपकी जांघों की मांसपेशियां, पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। अग्रमुख श्वासन एंड कुर्सी आसन कमर के निचले हिस्से को मजबूत करने वाले आसनों में शामिल हैं। तो इस प्रकार ये आपकी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है, साथ ही ये आपके शरीर के लचीलेपन में भी सुधार लाता है। योग का सबसे पहला और स्पष्ट लाभ लचीलेपन में सुधार है, जो शुरुआती लोगों को भी आसानी से नजर आता है। नए तरीकों से हिलने डुलने और खिंचाव करने की गति की सीमा और चिकनाई बढ़ती है, खासकर यदि आपके जोड़ों और रीढ़ की हड्डी में दर्द है। बढ़ती उम्र के साथ रोजमर्रा के कामों को आसानी से करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अभी से योग शुरू कर दें। साथ ही जब आप अधिक मजबूत और लचीले हो जाते हैं, तो आपकी शारीरिक मुद्रा में भी सुधार होता है। खड़े होने और बैठने की अधिकांश मुद्राओं से कोर मसल्स मजबूत होती हैं, क्योंकि प्रत्येक मुद्रा को सहारा देने और बनाए रखने के लिए पेट की मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, और मजबूत कोर मसल्स के साथ आप सीधे बैठने और खड़े होने में अधिक सक्षम होते हैं। साथ ही दोस्तों, योग से आपकी हड्डियों और आपके जोड़ों को भी लाभ होता है, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि भार उठाने वाले व्यायाम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, और योग के कई आसनों से आपको अपना वजन उठाना पड़ता है। योग जोड़ों के स्वस्थ कार्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि कुछ आसन तरल पदार्थों के निकलने को बढ़ावा देते हैं और साथ ही महत्वपूर्ण जोड़ों की मांसपेशियों को भी वो मजबूत करते हैं। साथ ही दोस्तों, ये आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक। जब आप नियमित रूप से अपने हृदय गति को एरोबिक रेंज में रखते हैं, तो दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम हो जाता है। हालांकि दोस्तों, सभी योग एरोबिक नहीं होते, लेकिन अगर आप इसे जोरदार तरीके से करते हैं या कुछ खास तरह के योगासन करते हैं, तो ये आपके हृदय गति को एरोबिक रेंज तक बढ़ा सकता है। साथ ही ये हमारे श्वास लेने में भी लाभदायक होते हैं, क्योंकि हम में से कई बार आपने देखा होगा, कई लोग जो होते हैं उथली सांस लेते हैं और इस बात पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते कि हम कैसे सांस ले रहे हैं। योग के अधिकांश रूपों में हमें गहरी सांस लेना और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना होता है, जिससे हमारे फेफड़ों की क्षमता में सुधार होता है और उसके परिणाम से खेल प्रदर्शन हो या सहन शक्ति में सुधार, इन सभी में हमें अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं। तो साथियों, ये थे योग के कुछ शारीरिक लाभ। योग हमें सिर्फ शारीरिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि कुछ मानसिक लाभ भी देता है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको
ले चलते हैं गीत संगीत की मनोरंजक दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

कोयल सी तेरी बोली, सूरत है कितनी भोली, कोयल सी तेरी बोली, सूरत

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में गीत, फिल्म का नाम था बेटा। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था आनंद मिलिंद का। साथियों, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे योग के बारे में, क्योंकि योग हमारे शरीर को निरोग रखता है। उसके हमारे शरीर पर शारीरिक रूप से तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन योग करने से हमें मानसिक रूप से भी लाभ होता है। तो आइए जानते हैं कि हमें इसमें मानसिक रूप से क्या लाभ मिलता है। साथियों, योग के शारीरिक लाभों के अलावा मानसिक लाभ भी बहुत है। व्यायाम के पारंपरिक रूपों के विपरीत योग में ध्यान और श्वास क्रिया का समावेश व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। ये हमारे तनाव को कम करता है। योग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये व्यक्ति को तनाव के विनाशकारी प्रभावों से निपटने में मदद करता है। शारीरिक गतिविधि तनाव कम करने में सहायक होती है और योग के मामले में ये बात विशेष रूप से लागू होती है। योग की शांत और सटीक गतिविधियां और वर्तमान क्षण में रहने पर जोर देना बाहरी तनावों से ध्यान हटाने में भी मदद करता है। कई लोग योग कक्षाओं से निकलते समय पहले की तुलना में कम तनाव महसूस करते हैं। साथ ही योग करने से आपको अपने शरीर के बारे में अधिक जागरूकता मिलती है, क्योंकि इसमें अक्सर शरीर की स्थिति को सुधारने के लिए सूक्ष्म गतिविधियां करनी पड़ती हैं। तो इससे हमें हमारे शरीर के प्रति जागरूकता आती है और समय के साथ शरीर में सहजता का स्तर बढ़ता है, जिससे शारीरिक समस्याओं और बीमारियों का शीघ्र पता लगाने और समय रहते निवारक उपाय करने में मदद मिल सकती है। साथ ही दोस्तों, मानसिक शांति भी हमें योग से मिलती है, क्योंकि योग में अभ्यास किए जाने वाले कई श्वास व्यायाम हमारे विचारों की अंतहीन धारा को शांत और नियंत्रित करने के लिए विकसित किए गए हैं। इससे प्रत्येक आसन को करते समय एकाग्रता बढ़ती है और अधिकतर मामलों में ये शांति पूरे दिन बनी रहती है। तो साथियों, ये योग करने के कुछ मानसिक लाभ हैं। तो देखा आपने, योग आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं देता, बल्कि अगर आप नियमित रूप से योग करते हैं तो ये आपको शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से लाभ पहुंचाता है। और आज की इस भागदौड़ भरी, इस तनाव भरी जिंदगी में हमें योग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि साथियों, अभी आपने सुना होगा कि कई लोगों को छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक आ जाता है या हार्ट की प्रॉब्लम होती है या छोटी उम्र में उन्हें कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती है। तो उन सबसे बचने के लिए सबसे कम खर्चीला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है ये योग करना। तो आप अगर नियमित रूप से आधा घंटा भी अगर योग करते हैं तो आपको कुछ ही महीनों में इसके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, अभी वक्त तो चला है एक अल्पविराम का और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: साथियों, आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई एक पहल जो कि नॉन कॉर्पोरेट और नॉन एग्रीकल्चर वाले छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक की फाइनेंशियल सहायता प्रदान करती है। ये लोन, जिन्हें मुद्रा लोन कहा जाता है, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस

इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों सहित फाइनेंशियल संस्थानों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। पीएम मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए आवेदक सीधे इनमें से किसी भी लोन दाता के पास जा सकते हैं या ऑनलाइन माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जानेंगे कि मुद्रा लोन के प्रकार कौन कौन से हैं। सरकार ने माइक्रो यूनिट या उद्यमी की फंडिंग आवश्यकताओं के आधार पर मुद्रा लोन को तीन प्रकारों में विभाजित किया है। पहला, शिशु मुद्रा लोन स्कीम के तहत शिशु मुद्रा लोन उन उद्यमियों को 50,000 रुपये तक की राशि प्रदान करता है जो बिजनेस के प्रारंभिक चरणों में हैं या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। उधारकर्ताओं को मशीनरी सप्लायर का विवरण भी इसमें देना होता है। इसके बाद आता है किशोर मुद्रा लोन। इस स्कीम के तहत किशोर मुद्रा लोन उन लोगों को 5,00,000 रुपए तक का लोन प्रदान करता है जो अपने संचालन को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फंड चाहते हैं। उधारकर्ताओं को बिजनेस की आर्थिक और तकनीकी व्यवहारता वाली रिपोर्ट भी प्रदान करनी होती है। उसके बाद आता है तरुण मुद्रा लोन। अगर बिजनेस मालिक कुछ योग्यताओं की शर्तों को पूरा करता है तो तरुण मुद्रा लोन 10,00,000 तक की स्वीकृति देता है, यानी वो 10,00,000 तक के लोन के लिए योग्य हो जाता है। हालांकि ये स्कीम फाइनेंसिंग प्रदान करती है लेकिन आसान शर्तों को पूरा करने और न्यूनतम डॉक्यूमेंटेशन प्रदान करने पर कुछ ही समय के अंदर आप इस लोन की स्वीकृति ले सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है तरुण प्लस मुद्रा लोन, यानी इसके तहत उन उद्यमियों को 10,00,000 से 20,00,000 तक का लोन दिया जाता है जिन्होंने अपने पिछले तरुण कैटेगरी के लोन का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान कर दिया है। ये कैटेगरी केंद्रीय बजट 2024-25 के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। ये उन लोगों को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद करती है जिन्होंने तरुण मुद्रा लोन लिया और उसे समय पर पुनर्भुगतान कर दिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। साथियों, मुद्रा लोन लेने का उद्देश्य उन लोगों को फाइनेंस की जो जरूरत है उसको पूरा करना है जो अपनी किसी चीज को बैंक में गिरवी नहीं रख सकते। इसमें आपको बिना किसी चीज को बैंक में रखे लोन मिल जाता है, क्योंकि ये उन लोगों को जिन्हें कार्यशील पूंजी की जरूरत है उन्हें फाइनेंस करता है। इसके तहत वे अपने व्यापार के लिए उपकरण या मशीनरी खरीद सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाहन ले सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों में बिजनेस की सहायता कर सकते हैं, या फिर मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन सहित जैसी कृषि गतिविधियों के लिए भी इस लोन के तहत फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके क्या लाभ हैं? मुद्रा लोन का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इसीलिए मुद्रा लोन प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी प्रदान करने या पर्सनल या बिजनेस प्रॉपर्टी को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। ये एक सबसे बड़ा लाभ इस लोन का है। ये लोन लगभग हर सेक्टर में पूरे भारत में माइक्रो बिजनेस शुरू करने के लिए उद्यमियों के लिए आसानी से उपलब्ध है। अगर आप अप्रत्याशित समस्याओं या प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोन का पुनर्भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी ले सकती है। साथ ही मुद्रा लोन छोटे बिजनेस के लिए तेज और आसान फंडिंग प्रदान करते हैं। मुद्रा लोन की लिमिट 10,00,000 तक की होती है जिसका लाभ बिना किसी देरी के लिया जा सकता है। साथ ही महिला उद्यमियों के लिए मुद्रा स्कीम के तहत विशेष लाभ और कम ब्याज दरें मिल सकती है। मुद्रा लोन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है क्योंकि ग्रामीण बिजनेस बेहतर एक्सेस के कारण अक्सर अधिक लाभ उठाते हैं। आप अपने बिजनेस के अनुसार लोन का पुनर्भुगतान जल्दी भी कर सकते हैं और 7 वर्ष तक की पुनर्भुगतान अवधि को बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये स्कीम आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करने के लिए कैश क्रेडिट और इक्विपमेंट लोन जैसी विभिन्न प्रकार की फाइनेंशियल सहायता भी प्रदान करती है और आप इसके तहत मुद्रा कार्ड के लिए भी अप्लाई

कर सकते हैं जो जरूरत पड़ने पर पैसे और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं तक आसान एक्सेस प्रदान करता है। तो साथियों, ये थी मुद्रा लोन के कुछ फायदे। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को, अपने उद्यम को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार की ये मुद्रा लोन योजना आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। साथियों, अभी वक्त तो चला है फिर से मनोरंजन का, तो आइए आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए बबले।

还要逃出来呀，阿弥。

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म बंटी और बबली से ये टाइटल ट्रैक। आवाज थी जसविंदर नरूला, सिद्धार्थ, सुखविंदर सिंह और शंकर महादेवन की। गीत के बोल थे गुलजार के और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। दोस्तों अभी गर्मी का असर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कई इलाकों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में जरा सी लापरवाही भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तेज धूप और गर्म हवाएं शरीर में पानी की कमी पैदा कर देती है, जिससे चक्कर, कमजोरी, सिरदर्द और उल्टी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। कभी कभी हालात इससे भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं और व्यक्ति को हीट स्ट्रोक का खतरा भी हो सकता है। हीट स्ट्रोक में शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अगर समय पर इलाज न मिले तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए दोस्तों गर्मी के इस मौसम में शरीर के संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ज्यादा प्यास लग रही है, बार बार थकान महसूस हो रही है या शरीर में कमजोरी लग रही है तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। ये संकेत है कि आपका शरीर गर्मी से प्रभावित हो रहा है और इसके लिए जरूरी है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। दिन भर में थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें भले ही आपको प्यास नहीं लगी हो। इसके अलावा नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी जैसे पेय पदार्थ शरीर को ठंडक देने में मदद करते हैं, तो जितना हो सके आप इनका भी सेवन कर लें। गर्मी में दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। ये समय दिन का सबसे गर्म हिस्सा होता है और इस दौरान धूप सीधे शरीर पर असर डालती है। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो छाता, टोपी या गमछे का इस्तेमाल जरूर करें। ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनना भी बहुत जरूरी है। काले और टाइट कपड़े गर्मी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जबकि हल्के कपड़े शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। साथ ही दोस्तों घर के अंदर भी खुद को ठंडा रखने की कोशिश करें। पंखा, कूलर या एसी का इस्तेमाल करें और कमरे को हवादार रखें। हो सके तो खिड़की पर पर्दे डाल लें ताकि धूप सीधी आपके कमरे में नहीं आ पाए। संभव हो तो दिन में एक दो बार ठंडे पानी से स्नान करें, जिससे कि आपके शरीर का तापमान नियंत्रित बना रहे। इन सब के अलावा दोस्तों खान पान पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। ज्यादा तला भुना और भारी खाना गर्मी में परेशानी बढ़ा सकता है, तो कोशिश करें कि हल्का और सुपाच्य भोजन लें जिसमें फल और हरी सब्जियां शामिल हैं। और दोस्तों अगर आपको या आपके आसपास किसी भी व्यक्ति को चक्कर, उल्टी, बेहोशी या शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, ऐसे लक्षण दिखें, तो अपने आसपास के हॉस्पिटल उसे लेके जाएं या नज़दीकी किसी डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ऐसे में लापरवाही करना या देरी करना खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए दोस्तों

इस भीषण गर्मी में सही सावधानियां अपनाकर और अपने आप को ठंडा रखकर ही हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। तो साथियों, अभी फिर से आपको ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

हर गम से अनजान है, खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के।

वाला छठी पे आए चमक चांदनी, होठों पे तेरे गीतों की माला, सांसों में तेरी खुली रागिनी। बैंड बजाऊंगा झूमके गाऊंगा, प्यार तेरा होगा बारात सजेगी, सजनी सजन होंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनाड़ी से गीत। आवाज थी उदित नारायण की। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था आनंद मिलिंद का। तो साथियों, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे भीषण गर्मी के बारे में। तो आप भी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और इस भीषण गर्मी में कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से खुद को बचाएं। अगर तापमान चरम पर है तो जितना हो सके गर्मी में बाहर जाने से बचें। जितना अर्जेंट काम है वो आप सुबह या शाम के समय में शेड्यूल करें ताकि दोपहर में आप अपने आप को बाहर जाने से बचा सकें। खूब पानी पिएं, सोडा और शराब से परहेज करें क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी करते हैं। प्यास लगने से पहले ही नियमित रूप से पानी पीते रहें। इलेक्ट्रोलाइट युक्त स्पोर्ट्स ड्रिंक भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ ही सही कपड़े पहने ताकि आपका जो शरीर है वो ठंडा रहे। अपने जीवन के उन लोगों के प्रति भी सजग रहे जिन्हें अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग। साथ ही हृदय रोग और मोटापा जैसी गंभीर बीमारियों से त्रस्त लोग भी गर्मी से होने वाली बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, तो उनका खास ख्याल रखें। किसी भी प्राणी, बच्चे या पालतू जानवर को अपनी कार में बिल्कुल भी ना छोड़ें। साथ ही जो पालतू जानवर होते हैं या जो भी हमारे गली में आसपास जो भी जानवर हैं उनका भी ख्याल रखें, उन्हें भी पानी की व्यवस्था आप करके दे सकते हैं। साथ ही अपने घर के छत पर भी आप पक्षियों के लिए भी परिंदे लगा सकते हैं और उसमें पानी और कुछ अनाज रखें ताकि पक्षी भी इस भीषण गर्मी में अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो साथियों, ये कुछ जानकारी थी जो कि आप अपने जीवन में अपनाकर इस भीषण गर्मी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अब घड़ी ने इशारा कर दिया है और समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने दोस्त क्षितिज को दीजिए इजाजत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे न्यूज इन इंग्लिश आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। चित्र भारती कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 9:30। इवनिंग न्यूज आप सुन सकते हैं रात्रि 9 बजे। समाचार संध्या का समय रहेगा रात्रि 8:45 आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

शाम 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से। जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं शाम 6:40 पर आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से।

बेहतरीन फिल्मी गानों का आनंद ले सकते हैं हमारे श्रोता रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र से। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:30। राजस्थानी लोक संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर। किसान भाई अपना कार्यक्रम किसान वाणी सुन सकते हैं शाम 7:00। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा शाम 6:15 और अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:05 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी जैसलमेर है FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं सुनते हैं भक्ति संगीत दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

एक बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, चूंकि ऋषि मुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है

ब्राह्मण भोजन जिससे उन्हें बल मिलता है, यज्ञ हवन तप श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर सिद्ध मनुष्य नाग आदि जीवधारियों के हठ पूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह कर लिया। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने पाता था। यज्ञ तप ज्ञान आदि सभी के मार्ग बंद हो गए। राक्षसों का ऐसा अत्याचार फैला जिसका वर्णन कठिन है। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई।

कछु कहो सो सब जन पहले ही कर रहे हो रथ मही जन कहू आयो सुना इन कर चरित सुनहु जो कीना एक तभी मरूप सब पापी इस चरण कर देव परतापी करही उपद्रव असुर निकाया नाना रूप करही कर माया के विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करही भेद प्रतिकूला यही यही देश धेन दुज पावई।

0: तप मख भागा लवन सुनई दस सीसा आपुन उठ धावई रहई न पावई धरि सब घालई खीसा
1: अस भस्त अचारा भा संसारा धर्म।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अपनी शरण में लेना, मैं दास तुम्हारा जन्म से हूँ, मैं दास तुम्हारा।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से।

से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू हुआ। सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना।

0: जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने आमजन से सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की है। उधर पाली जिले में भी 3000 से अधिक प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए वास्तविक लोकेशन के साथ आंकड़े जुटा रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपित मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित उनके आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाईं। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। कल गिरफ्तार किए गए 2 अन्य आरोपितों को पुणे की अदालत में पेश किया गया और पारगमन रिमांड के बाद दिल्ली भेज दिया गया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने देश भर में 6 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई के इस दौर में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ही देश की संप्रभुता की एकमात्र गारंटी है। श्री शेखावत आज जोधपुर में रक्षा प्रयोगशाला के 68वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध का माध्यम नहीं है, बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसी तकनीकें भी सामरिक हथियार बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि देश रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शेखावत ने वैज्ञानिकों से विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
1: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के विश्व दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण विषय। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब का दौरा कर स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न तकनीकी नवाचारों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के प्रयासों को देखा। मुख्य सचिव ने एआई और आधुनिक तकनीक पर आधारित शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप्स को पीएम श्री विद्यालयों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली स्तर पर ही बच्चों को उन्नत तकनीक और नवाचारों को समझने का मौका मिलेगा।
2: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आईस्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज से न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नेदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नेदरलैंड के हेग में

0: भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर के मणाई में एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर 51,10,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही बजट घोषणा के अनुसार स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपए की लागत से विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनाया जाएगा। श्री पटेल ने बताया कि करीब 400 विद्यालयों को सीएम राइज स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के 1,000 स्कूलों में एआई आधारित लर्निंग लैब्स स्थापित की जाएंगी। जयपुर पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नवाचार कर रही है। इनमें एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप शामिल है। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप के बारे में बताते हुए जयपुर के पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने कहा कि ये बहुभाषी ऐप स्मार्ट नेविगेशन और त्वरित सहायता जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
2: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है, उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। किसी टूरिस्ट को कभी किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प पा सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज्ड गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं। इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर।
0: जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से जूनियर समर कैंप की शुरुआत हुई। पर्यटन कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने इस शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। 20 जून तक आयोजित होने वाले इस कैंप में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए इस वर्ष 500 से 600 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाए हैं। जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया ने बताया कि कैंप के दौरान बच्चों को रंगमंच के साथ साथ कला सहित विभिन्न विधाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
3: नृत्य से संबंधित, संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन, गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, स्किन का समावेश किया गया है। साहित्यिक भी स्टोरी ट्रीज, इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सके। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
0: और अब मौसम। प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। चिलचिलाती धूप और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग के अनुसार अगले सप्ताह प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी जिलों में दिन का पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राज्य में एक बार फिर से हीट वेव का दौर शुरू होगा। वहीं 18 मई से पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। झुंझुनू में जागरूकता रैली निकाली गई। ANM ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं के द्वारा निकाली गई इस रैली के माध्यम से डेंगू के बचाव और मच्छरों की रोकथाम के उपायों

0: की जानकारी दी गई। जैसलमेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की कर्मियों की ओर से मच्छर रोधी गतिविधियां की गई और लोगों को समझाया गया। वहीं करौली में जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेमो, पोस्टर, पैम्पलेट और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू। सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर भीलवाड़ा जिले में शिक्षा के अधिकार को धरातल पर उतारने की मुहिम जारी है। राज्य सरकार की ओर से पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के मामले में भीलवाड़ा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। ये लक्ष्य 1 अप्रैल से शुरू किए गए प्रवेशोत्सव के दौरान हासिल किया गया है। इसके तहत जिले में चिन्हित किए गए करीब 15,500 बच्चों में से 14,790 बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिया जा चुका है। अब भीलवाड़ा जिले में लगभग 5.25% पात्र बच्चे ही स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, जो प्रदेश में सबसे कम है। जिले के तिलोली गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायी पहल देखने को मिली। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 10वीं और 12वीं के 6 मेधावी विद्यार्थियों को शानदार परिणाम देने पर हवाई यात्रा की सौगात मिली। युवा भामाशाह दशरथ सिंह राठौड़ ने इन होनहारों को जयपुर से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा पर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना और अन्य छात्र छात्राओं को मेहनत के लिए प्रोत्साहित करना है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी हाल ही में भीलवाड़ा प्रवास पर रहे। उन्होंने मांडल विधानसभा क्षेत्र में पेयजल विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जलदाय मंत्री ने कहा कि सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के मिशन पर काम कर रही है। जिन इलाकों में भी पीने के पानी की समस्या है, वहां टैंकरों के जरिए पानी आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बीसलपुर बांध में पानी की काफी आवक हुई है। ऐसे में अजमेर, ब्यावर, टोंक और जयपुर जिले में पानी की नियमित आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में पानी की दिक्कत नहीं है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीते दिनों भीलवाड़ा आए। उन्होंने जैन समुदाय के संगठन जीतो की ओर से आयोजित सामूहिक नवकार मंत्र जाप कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज के दौर में धर्म और संस्कृति से जुड़े रहना जरूरी है, जिससे नई पीढ़ी को भी इसका लाभ मिले। जीतो के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिले की चिट्ठी में अब बात ग्राम रथ अभियान की। हालांकि जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ईंधन बचत की कवायद के कारण इसका आयोजन अभी रोक दिया गया है। ग्राम 2026 व्यापक प्रचार प्रसार और लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए ही ग्राम रथ अभियान शुरू किया। इसके तहत सभी जिलों की ग्राम पंचायतों पर ग्राम रथ पहुंच रहे थे। भीलवाड़ा जिले में भी जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में ग्राम रथ अभियान संचालित किया गया। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने भी जिले का दौरा कर ग्राम रथ का जायजा लिया। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर खरीफ फसल की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज और खाद के भंडारण के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जिले के प्रवास पर रही। उन्होंने सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम रथ अभियान में शिरकत की। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ग्रामीण रथ अभियान के तहत आसींद क्षेत्र में रात्रि चौपाल में शामिल हुए। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के मौके पर जिले में अनेक

0: स्थानों पर कार्यक्रम रखी गई। वहीं पुलिस प्रशासन की सतत निगरानी के चलते इस दौरान जिले में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ। जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है, हालांकि मौसम में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले में कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई और कुछ जगह ओले भी गिरे। हालांकि थोड़ी राहत के बाद उमस और तेज गर्मी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के PMO डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि गर्मी में पेय पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए। उन्होंने प्रचंड गर्मी के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं से विशेष सावधानी रखने को कहा है। भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। जनगणना 2027 तहत राज्य में आज मकानारी लिस्ट बनावन रो काम शुरू हो। नीट UG 2026 पेपर लीक मामला में CBI आज एक और आरोपित ने पकड़ियो। हाल ताई 9 जना गिरफ्तार करी चिया। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूलों में नुआ कोर्स शुरू करिया जावेला। और प्रदेश घणखर हलका में जबरदस्त गर्मी। आवता सप्ताह में पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बारा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। जनगणना 2027 तहत प्रदेश में आज मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू फेंक्यो। 14 जून तक चलन वाला इन काम में प्रगणक घर घर जार मकान बनावन में काम ली रीजी सामग्री और मौजूद सुविधा ने बारा में 33 सवाल पूछ रहा है। भीलवाड़ा जिला में इन काम सारू 4163 प्रगणक लगाई चिया है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू जनताओं प्रगणका ने सही जानकारी देर प्रशासन री मदद करन री अरज कीनी है। पाली जिला में आई 3072 प्रगणक मोबाइल ऐप रे जरिए वास्तविक लोकेशन सागे जानकारियां भेड़ी कर रहा है। नीट UG 2026 परीक्षा रा पेपर लीक मामला में CBI आज एक और आरोपित महाराष्ट्र रा पुणे री बोटनी री शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंधारे ने गिरफ्तार कीनी। वाने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी विशेषज्ञ रा तौर नियुक्त कीनी है। जांच एजेंसी रे मुजब वारी जूलॉजी और बोटनी रा पेपर ताई पूरी पहुंच ही। CBI रे मुजब वा 14 मई ने पकड़ी जी आरोपित मनीषा वाघमारे रे मार्फत नीट परीक्षा रा उम्मीदवार ने वाना पुणे रा घर माए खास कोचिंग दीनी। ई मामला में हाल ताई दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर 9 आरोपिता ने पकड़ी चिया है। काल गिरफ्तार करी जिया 2 आरोपिता ने पुणेरी अदालत सामी पेश करी जिया, जठाऊ वाने अदालत दिल्ली भेज दीना। लाला 24 घंटा माई CBI न्यारी न्यारी ठोड़ाऊ कई आपत्ति जोग कागजात, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त कीना है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि AI रा दौर माए देश री हिफाजत रा हल्का माए खुद रे पाण उबो भेवणोई देश री संप्रभुता री गारंटी है। वे आज जोधपुर माए रक्षा प्रयोगशाला रा 68वां स्थापना दिवस रे मौके राखी जिया कार्यक्रम माए बोल रहा हा। केंद्रीय मंत्री कहो कि दुनिया रा बदलता हालात माए अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध रो जरियो नहीं है, बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर चिप बनावन सरीखी तकनीक आई लड़ाई रा हथियार बन की है। वह कहो कि देश हिफाजत रा हल्का माय काम आवन वाला साजो सामान दिसावर उ मंगावन री बजाय देश माई बनार खुद रे पान उबो भे वनोड़ी तेजी बढ़ रियो है।
2: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण विषय। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर

0: का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
1: राजस्थान विधानसभा बनिया 75 साल में बन रहे मौके 18 मई ने विधानसभा रा नुआ लोगो रो विमोचन और ऐतिहासिक दरूजा रो नामकरण करियो जावेला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बतायो कि लारला 28 साल माए राजस्थान विधानसभा माए डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था, डिजिटल संग्रहालय, संविधान दीर्घा और जन दर्शन सरीखा कई खास नवाचार करी जिया जाऊ इनरी देश माए खास ओळखाण बनी है। इन खास कार्यक्रम माए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विपक्ष रा नेता टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल समेत कई मान्योड़ा लोग शामिल फैला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर रा भामाशाह टेक्नो हब रो दौरो कर स्टार्टअप्स और नौजवान कारोबारियां कान्यू करिया जा रहा तकनीकी नवाचार री जानकारी लीनी। वे रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण सरीखा खास हलका माए स्टार्टअप्स री कोशिशां देखी हरवानी सराहना कीनी। मुख्य सचिव एआई और नवी तकनीक माथे आधारित भणाई लिखाई जुड़िया स्टार्टअप्स ने पीएम श्री स्कूलों जोड़बा माथे जोर दीनो।
2: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आईस्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे, तो काफी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत और नीदरलैंड दुनिया रा संकटन और सामो करण सारू भरोसेमंद, साफ और आवता भगत सारू तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनावन रे बारा माए मिलर काम कर रहा है। वे 5 देशों रा दौरा रा तेत आज नीदरलैंड रा हेग माए भारतीय समुदाय रा लोगा ने संबोधित कर रहा है। श्री मोदी ऊर्जा संकट सरीखी चुनौतियां रो निपटारो बेगो नी भेवन री सूरत माए दुनिया रा विकास माथे असर पड़बा सागे मोटी आबादी रे गरीबी री ओर बढ़वा री शंका जताई। प्रधानमंत्री कहो कि 21वीं सदी माए भारत मौका री धरती बैन अर सामी आयो है जो तकनीक और इंसानी मूल्यों रा आधार आगे बढ़ रियो है।
3: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है, हम सभी देख रहे हैं। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रदेश माए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रे मुजब व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूला माए नुआ कोर्स शुरू करिया चावेला। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर जिला रा मणाई माए एक स्कूल माए राखी जा कार्यक्रम माए आ जानकारी दीनी। वे कहो के ई काम माथे 51 करोड़ रुपए बत्ती रकम खर्च करी जावेला। मंत्री बतायो के बजट माए करी जा ऐलान रे मुजब स्कूला माए बुनियादी ढांचा रा विकास सारू 2000 करोड़ रुपया रो विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनायो जावेला। श्री पटेल बतायो के करीब 400 स्कूला ने सीएम राइज स्कूला रा तौर विकसित करी जावेला और 1000 स्कूला माए एआई आधारित लर्निंग लैब्स खोली जावेला। सैलानिया री हिफाजत और सुविधा सारू जयपुर पुलिस एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप सरीखा नवाचार कीना है। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप री जानकारी देता थका जयपुर रा पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल कहो कि न्यारी न्यारी भाषावां माए काम करण वालो ओ ऐप स्मार्ट नेविगेशन और तुरंत मदद सरीखा सुविधाई मुहैया करावेला। वे बतायो कि ई ऐप रे मार्फत सैलानिया ने सुरक्षित गेलना री जानकारी, सत्यापित गाइडां री लिस्ट और मुश्किल भगत माए मदद मिल सकेला।
2: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है, उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा, किसी टूरिस्ट को कभी किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प पा सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज्ड गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं, इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर।
1: जयपुर राज्य जवाहर कला केंद्र में आज जूनियर समर कैंप शुरू हुआ। पर्यटन कला और संस्कृति विभाग के शासन सचिव सुचि त्यागी इनरो उद्घाटन किन्नो। 20 जून तक चलन वाला इन कैंप में मोटी तादाद में बच्चा नाम मंडाया है। जवाहर कला केंद्र री अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया बतायो कि शिविर में बच्चा ने रंग मंच सागे कला समेत न्यारी न्यारी विधावारी व्यावहारिक सिखावन दी जा रही है।
4: नृत्य से संबंधित, संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन, गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, इनका समावेश किया गया है। साहित्यिक हुई स्टोरी की इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सके। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाएगा।
1: अरब मौसम, प्रदेश रात घनखर हल्का माए जोरदार गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुजब लाडला 24 घंटा माए फलौदी 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सागर सब 19 ठोड़ रहे हो। महकमारे मुजब आवता सप्ताह प्रदेश का घनखर हल्का माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बारा आसार है। इन दौरान उगनी रातुनी हल्का माए तापमान 45 डिग्री सेल्सियस ताई पुगण की संभावना है। इन बीच 18 मई आतुनी और उत्तराध हल्का माए जोरदार बायरो बजण की संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके प्रदेश में ही कई कार्यक्रम रखी गया। झुंझुनू माए ANM ट्रेनिंग सेंटर री टावरिया री ओर जागरूकता रैली निकाल और डेंगू बचाव और मच्छर की रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई। जैसलमेर माए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रा कर्मचारिया री ओर मच्छर मारण सारो जतन करी गया और जनता ने जानकारी दी गई। करौली माए जांच करें, सफाई करें और ढकें मुद्दा माथे चलाया जा रहा अभियान रा तहत शहरी और गांवी हल्का माए डेमो पोस्टर पंपलेट और सोशल मीडिया के जरिए जाग जगाई जा रही है। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। जनगणना 2027 रा तहत राज्य में आज मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू हुयो। नीट UG 2026 पेपर लीक मामला में CBI आज एक और आरोपित ने पकड़ियो। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूल में नुआ कोर्स शुरू कर जावेला। और प्रदेश का घनखर हल्का माए जबरदस्त गर्मी, आवता सप्ताह पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वारा आसार। इस आ गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।
6: प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान नाने सुनाला सबला भाइयों ना अवनीता बहन और
7: लाल जी भाई रा घना घना राम राम। तो किसान भाइयों के गर्मी रो मौसम है और ये गर्मी रो मौसम में अपन विशेष तौर से अपन पर स्वास्थ्य रो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उर वास्ते अपन जब भी अपन घर से निकलो तो कपड़ा वो सब पहन रखो और उरे बाद कीन की अपन आरो तरल पदार्थ जो नींबू शिकंजी है, पानी है, छाछ है या इमली पानी है, मतलब अपन कीन की पी निकलना चाहिए। और जब भी घर से बाहर निकलो तो अपन एक पानी की बोतल भी अपन साथ में लेकर निकलनी चाहिए। और उसके साथ साथ अपन देख रहे हैं कि भी गर्मी के मौसम में बीमारी भी फैल रही है, तो वह हिसाब से अपन अपन स्वास्थ्य भी ध्यान रखना है। और अगर अपन छोटी मोटी अगर सर्दी जुकाम या बुखार हरारत हो करे तो अपन अपन खुद डॉक्टर बनना होने और जो भी नज़दीक प्राथमिक चिकित्सालय है या अस्पताल है या मतलब कोई भी अड़ी सुविधा है तो वो जो अपन चेक कराना है। और चेक कराने बाद जो भी अपन डॉक्टर दवाई लिख देवे, टिकड़ी लिख देवे, उन अपना नियमित रूप से उन अपन लेना है। और उसके बाद आप जब अस्पताल जाओ तो देखो अपन ही सब दवाइयाँ फ्री है, आप सब जाँचों फ्री है, क्योंकि देखो डॉक्टर एक एक्सपर्ट है, हर मर्जरी में दवा है, तो अपन उन्हें चेक कराए के और अपन अपन दवाई लेनी है और अपन अपन इलाज कराना है। और देखो गर्मी की बात कर रहा था, आप गर्मी के मौसम में आना किसान भाई जिके कने ट्यूबवेल है या जो नेहरी भूमि आना है तो वो तो आप खेतों में कुछ कार्य कर रहे हो उसे, तो कार्य करने साथ साथ आप ये भी देख रहे हो कि भी एक समय हो तो जब इस पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती और आप जो खेती होती वो खेती सिर्फ बरसात होती, मतलब बरसात में तो ही चलती थी कि जब बरसात हुआ उठा वहाँ पर खेती करो। और हमें देखो इंदिरा गांधी नहर आ गई, ट्यूबवेल लग गया, तो आप ये थोड़ा जो क्षेत्र है पूरा बदल गए हैं। और बदलने बाद बाद अपन ये भी देख रहे हो कि ये क्षेत्र में नया नया आयाम अर्जित होया है, नया नया नवाचार होया है। और उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हो कि अपने ये क्षेत्र में अपने खजूर भी अपने उपलब्ध हो रही है हमें, और खजूर के साथ साथ अनार भी उपलब्ध हो रहा है, कीनू है और आप बेर कह सको, नींबू कह सको, मतलब हर प्रकार की चीज़ अपन उपलब्ध हो रही है। जो पहले अपन सिर्फ एक कैर सौंगरी चिबड़ियाँ कालिंग मतीरा यही अपन उपलब्ध होता, आज क्षेत्र बदल गए हुए, कृषि तकनीकी बदल गई है और अपन किसान द्वारा नया नवाचार हो गया है, वैज्ञानिक पद्धति बढ़ गया है, तो उसे अपन ये क्षेत्र में अपन नया नया चीज़ अपन मिल रहे हैं और कृषि क्षेत्र में विकास भी हुए हैं। तो आप कह सो कि भाई जो देखो कि भाई एक खजूर जो खजूर आज पहले उत्पादन कौन होती थी, आप देखता कि भाई खजूर है जो विदेशी है, मतलब विदेश में ही पैदा होती थी, लेकिन धीरे धीरे आप जैसलमेर जनक क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित हो और ये था पर खजूर बहुत ज़्यादा मात्रा में भी उत्पादन हो रही है और आप खजूर आए कृषि फॉर्म भी बड़ोड़ा पड़िया है। तो उस हिसाब से आप कह सो कि भाई कृषि में प्रगति हुई है। और दूसरों के भाई किसान भाई है जो जागृत होया है, और वैज्ञानिक जो कृषि वैज्ञानिक है वहाँ पूरी पूरी मदद करी है और उसे मदद के माध्यम से ही आज आप क्षेत्र नया नया आविष्कार होया है, नया नया चीज़ होया है कि अपनों अपनी फसल कौकर उत्पादन करना है, अपन फसल वास्ते कई भूमि उपयुक्त है या पर भूमि वास्ते कई कई अनाज उपयुक्त है और कौकर अपनों हीरो संपादन करना है, कौकर अपन ये जमीन जो उत्पादन कौकर लेना है के हिसाब से लेना है, जमीन में की तत्व की कमी है, यह सब अपर जो कृषि वैज्ञानिक है और जो भी अपरा कृषि भाई किसान भाई है उम्रे मेहनत से जैसे ही सफल हुई है। तो आज एक क्षेत्र है जो अपर जो क्षेत्र है ये था पर ऐसा या जीरो कह सको और अधिक उत्पादन किसान भाई करे। और उसके साथ साथ हमें जब वो यहाँ पर आय कौकर दुगनी करे डबल करे तो वो हिसाब से ये आप वृक्षारोपण।

0: पर काम चालू करियो। जेकर मैं फलदार पौधा लगाया, फलदार पौधा रो मैं आप कह सको कि भी नींबू है, अनार है और कीनू है, नींबू है और बैर। अपन उठाए के पहले जमाने तो आप सिर्फ एक लाल कलर का बैर या कोई पीड़ा हरा कलर का कोई देखता था या पीलू देखता था। लेकिन हमें आप देखो कि अपर ये क्षेत्र में जो बैर है, बैर उत्पादन भी बैर में कई प्रकार प्रजाति आ गया और उरे में अपोकने आठ तारीख में सेवर आकार अपोकने बैर उत्पादन हो गया। तो ये सब कृषि वैज्ञानिक और जो भी अपोरा किसान भाई है वो मेहनत नतीजो है, वो खेतों में जितनी मेहनत बढ़िया कर रहा है तो उरे परिणाम स्वरूप ही किसान भाई अपनी आय भी दुगनी कर रहा है और कृषि क्षेत्र में नया नया नवाचार भी कर रहा है। तो आप ये भी किसान भाई कह सो कि भी और भी बढ़िया तरीके से नया नवाचार करें। तो देखो वैज्ञानिक पद्धति होती बढ़ गई है जेकर आप कह कौन सको तो उरे कारण ही अप जो किसान भाई है जो को की नया नया उत्पादन करे।
1: बिल्कुल, एक और भी बात है कि भी किसानों ने जो को अगर आप खजूर खेती से जोड़ना से कृषि विभाग और जो को केंद्र सरकार है यह द्वारा भी जो को अनुदान प्रदान किया जा रहे हैं जिसके से आप कह सकते उन्नत शिशु कल्चर पौधा और अनुदान अनुसंधान जो जरूरी विषय जानकारी है वो भी इन लोगों ने प्राप्त हुई। जो आप कह सकते विकारे खजूर उत्कृष्टता केंद्र है या राज्य किसान सुविधा ऐप है इन माध्यम से जो किसान जो को घर बैठे सरकारी योजना और अनुदान बारे में और योजना और बारे में जो जानकारी हो सटीक प्राप्त कर सके।
0: बिल्कुल सही बात है कि भाई किसान भाई वास्ते कई प्रकार आया ऐप आ गया है तो ऐप के माध्यम से वो जानकारी ले सके और कृषि कार्यालय के माध्यम से भी ऐप ले सके और जो भी एक कृषि विज्ञान केंद्र भी जाए तो यहाँ की किसान वास्ते एक संगठन भी बनाए रखे है और व्हाट्सएप वाला ग्रुप भी बनाए रखे है जिसके से हर किसान ना जोड़ता रहे और जो भी नई नई चीज आई हम आप उठाए ना कि भाई मौसम तंत्र है तो कि भाई यहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है या जो हमें समय आसे तो टाइम आंधी आसे तो हवाओं कई गति से चल से बारिश आसे तो बारिश कद कद आसे। तो देखो वैज्ञानिक पद्धति जब बढ़ी है तो किसान भाई भी इसे जुड़िया है तो इसे किसान भाइयों ने बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। तो आप तो यही कह किसान भाइयों ने कि भाई वो नई नई वैज्ञानिक पद्धति से जुड़ता रहे और जुड़न के माध्यम से जो आप कृषि क्षेत्र में आप विस्तार करें और विकास करें जिसके से वो जो आय है वो बढ़ती रहे और प्रधानमंत्री जी सपन भाई जैसे भी किसान भाई और आय बढ़ावना नया नया तरीका खोज रहा है तो इस वास्ते किसान भाई भी कुछ मेहनत करेज बढ़िया और सरकार तरफ से भी किसान भाइयों ने कुछ न कुछ अनुदान दिया जा रहा है या काफ़ी योजनाएं दिया जा रही है। आप कह सको कि भी खाद बीज लगाए के उम्री फसल कटाई तक किसान भाइयों की इनके लिए योजना और लाभ दिए जा रहे हैं और किसान भाई पूरा लाभ ले भी रहे हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी योजना आ रही है और जो को भी किसान भाई योजना लाभ ले सके तो उन्हें लाभ लेना चाहिए। आप आगे भी और बातचीत जारी रखो और आप सुन जाओ एक हमें राजस्थानी लोकगीत।

0: आप सुने बढ़िया राजस्थानी लोक संगीत, और आप बातचीत कर रहा था कि नई नई तकनीक आ गया है, नई नई सब व्यवस्था हो गया है, तो अपन ये काम और भी करना है कि भाई जो अपन किसान भाई है जो फ्री बैठा है और इतनी फसल बुआई नहीं कर रहा है, तो उन सबसे बड़ा काम करना चाहिए कि भाई पहले तो आप जितना भी कृषि यंत्र है वो रिसार संभाल करनी चाहिए।
1: सही बात है।
0: और उसके साथ साथ उन आप खेतों में फसल चक्र अपनाना चाहिए। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात भी है कि उन आप मिट्टी और पानी की भी जाँच नियमित रूप से
1: कराना
0: चाहिए। उस की हो जाए कि भाई आप जब किसान देखो कि भी किसान भाई है जो खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक प्रयोग कर रहा है, तो रासायनिक प्रयोग किसी कारण से की हुई कि जमीन की जो उत्पादन क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाए, तो वो अगर आप नियमित रूप से मिट्टी जाँच कराता रहे क्योंकि आप मिट्टी सोइल हेल्थ कार्ड ऑफिस भी है तो वो था आप जाँच करा सके, तो अपन जो भी है खेत है तो खेत में अपन मिट्टी लेवनी है, चारों कोनों मिट्टी लेवनी है। और एक चीज़ विशेष तौर ध्यान रखना है कि पेड़ से जो पेड़ जेत आप लगोड़ा है और नीचे से अपन मिट्टी कौन लेवनी, अपर एक बाढ़ बंदी जेत करोड़ी अपन उस मिट्टी कौन लेवनी, अपन चार कोनों से मिट्टी लेवनी है और वी सेफ रम है अपन जो गड्ढू खोदना है और मिट्टी लेके अपन सब मिट्टी इकट्ठी करनी है और इकट्ठी करके सब मिट्टी ना मिलाए के और पूरे ही एक पैकेट बनाना है, और पैकेट बनाने बाद पूरे मैं अपन जो पैकेट अपन जो देसो ऑफिस में मिट्टी आड़े में ऑफिस में देसो कर सो जाँच केंद्र में देसो, तो पूरे मैं अपन आपो नाम आपो खसरा नंबर आपो जमीन कई दिश कई खसरा नंबर साथ साथ पूरा जमीन का खाता नंबर ये सब दे के अपन जमा कराना है, और कुछ दिनों में अपन जो शुल्क लग से 5-10 रुपये जो भी शुल्क पूरा है वो शुल्क जमा कराए के आप अपने जो खेत री मिट्टी री जो भी आप एक्सम जाँच है आप करा सको है, और पूरे बाद जो भी आप तत्व की कमी है और आप तत्व में जो मिलाए करके आप जमीन पचो स्तर सुधार सको। और एक और चीज़ है कि भाई आप देख भी रहे हो कि भाई आप आज तारीख में जो किसान भाई है जो खेतों में है ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक प्रयोग कर रहे हैं, आप किसान भाई ने किसान कभी रासायनिक प्रयोग नहीं करके ये थोड़ी जैविक तरफ अगर चले तो खेत की खाद खेत में तैयार भी हो जा से और थोड़ा खेत भी सुधार हो जा से, जमीन भी बढ़िया संतुलन बन जा से और थोड़ा उत्पादन भी बढ़िया हो जा से, और उसके साथ साथ जब भी थे फसल बाजार में जाए बेचो और एक जगह थे रासायनिक से उत्पादित फसल रख दो एक जगह थे जैविक से उत्पादित फसल रख दो, तो निश्चित रूप से थोड़ा जैविक रहा दाम अधिक मिल से और थोड़ी जो फसल है वो जल्दी भी बिक जा से, इस वास्ते सरकार भी पूरी पूरी किसान भाई सहायता भी कर रही है, उन्होंने जैविक से उत्पादित वास्ते उन्होंने सर्टिफिकेट भी दे रही है और थोड़ा यही है कि थोड़ा आप पूरे क्षेत्र में जैविक से उत्पादित फसल ही उत्पादन करना पड़ से, और दूसरों थोड़ी खाद भी थोड़े खेत तैयार हो जाओगी थोड़ी लागत भी कम लगी, अगर वो चीज़ देखो आप जो रासायनिक रही तो देखो जब रासायनिक आप बाजार से लाओ तो अपन वास्ते रुपया खर्च करना पड़े, और रुपया खर्च करने के बाद जब आप छिड़काव कराएं तो छिड़काव वास्ते जो भी नियम कायदा हुई कि भाई अपन शरीर में पूरा ढक रखना है ओके में चश्मो लगाए रखना है या जो हवा चल रही है वो तो अपन छिड़काव करना उसे छिड़काव करना है, और जो भी डबला बीजा है जो आप छोटे बच्चों से बूटा मात्र हसू या पशु हसू अपन आगा जला जलाना करना है, जब जब आप इतनी बात रखो है कि भाई रासायनिक और छिड़काव वास्ते अपन इतना नियम कायदा रखना पड़े, तो देखो कि भाई जब वो छिड़काव जमीन में करो तो जमीन की स्थिति की होती है, तो आप तो किसान भाई ने यही कहो कि जितों भी हो सके थे जैविक के साथ जुड़ो देखे सो फायदा ही है नुकसान की कोने और कम लागत रहा मोए थोड़ा अच्छा उत्पादन मिल जा से और थोड़ी फसल की कीमत थोड़ा बढ़िया मिल जा से, आप आगे भी बातचीत जारी रखो और आप सुन जो एक राजस्थानी लोग।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुगम संगीत, माफ कीजिए राजस्थानी लोक संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत।

अलका याग्निक के गाए फिल्म गुरु के इस गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं सुनते हैं सुगम संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य के विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी एएसएमएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर मुख्य आरोपी टीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारी को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 70 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के ही में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में

0: भागीदारीता भी है। मैं नेदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा वीर अलेक्जेंडर और रानी नेजिया से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोरेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लुबेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य प्राकृतियों की वापसी दोनों देशों के सांस्कृतिक सहयोग और विरासत भाग्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बने और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल है। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग घोषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन यह रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उत्पाद बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ஸ்கீமுக்கு தெரியணும்னே வந்து புதுசா சொல்றதால ஜனத்தை கடைகள் செய்யுது.
1: ஜன கணம பார
0: घर घर के
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नियमित प्रश्न पत्र मामले के कथित प्रयोग के आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अभय गुप्ता ने जांच एजेंसी को प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से न्यायिक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम

0: भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल के कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा एक में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: भारत में अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एन नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियों और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और पेट्रोलियम में से मिली हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: कागज कलम नहीं इस बार मोबाइल।

ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 900 से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। शी पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, मुआहे, लक्षद्वीप, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत टूर्नामेंट चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में 83 पदक जीता है। संजना ने इस मैच में 96 किलो, क्लीन जरपुर 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 83 पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य के विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र में पारने के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और से आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारत टूर्नामेंट चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

बाग को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: अमिताभ बच्चन और ऋचा शर्मा की गाय फिल्म बागवान के इस गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्र भारती आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।
1: का चित्र भारती।

0: राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक और विशेष लघु रूपक मेरे पास बना है। पहला पर्दा और पहली बातें इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
1: कैसी है पहेली
0: और स्मृति शेष में नवन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को
1: नारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजातरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित है या उनका हिंदी रीमेक है। क्योंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई है। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आपटे के उपन्यास नया पटवारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया में माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म

को जीडी नागवेल का लेखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंती देवकोड़े के उपन्यास आशा परत गीति पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक भरत के नाम से बना। सदन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई बहचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको यह जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वज़कई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामलू नायडू की तमिल फिल्म मलयक कालन का हिंदी रीमेक थी।

एलबी प्रसाद की फिल्म मस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ा धड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी बी श्रीधर की तमिल फिल्म मनंजल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था। इसी तरह 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पेरुविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी संडो एम ए चिरप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी। चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी। 1988 में आई फिल्म बयादान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकम का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी है। 1974 में आई जय ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजबे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चित्रकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली। सन 1970 में आई फिल्म द फ्रेम 1967 में आई मलयालम फिल्म कोचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र प्रभु का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फिल्म पर्स के निर्देशक थे रविकांत नाकानीच। ये फिल्म 1986

0: आप जानते हैं कि 1967 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म रोशन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानियों पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे बजरंग रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म देव जोले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया। बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी है। सन 1970 में आई फिल्म ऋषि पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई बाजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मनोषाई का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालो तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आते रहती है। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
1: एक ऐसे रूप की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी और जिसे वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दो देखे, मेरे वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़े हूं क्योंकि मैं आकाशवाणी हूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने इतने बड़े लंबे साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत से जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार

0: के उद्गार हर महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को मोहन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है। मेरे पास तो माँ है। हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
1: ओ न रोना के तो है।

0: घोड़ी चढ़ते तो आते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं।
1: उधर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने मां राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी मां जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी मां ही है।

को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान।

0: सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगल आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटी ने। यह किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: मुझे आजादी तो उनकी बहुत चाहिए।
2: अनार के लिए आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश। एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरुपमा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
1: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया, पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा। और तुम मुझे छोड़कर जा रहे
2: हो? ओके, ये बड़ा सौदागर बन गया है। मैं बहुत बात बोलू, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना

0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में वीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
1: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है। सन 2018 में आई बधाई हो, इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंग

0: गई दादी माँ।
1: किसी को नहीं देखा हमने कभी, कर इसकी जरूरत क्या होगी ऐ माँ। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत।
0: नब्बे के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडल हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नहीं बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन देती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्पररी है, वो जमाने के साथ चलती है। वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो

Film ABCD 2. ज़माना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार। मेरे पास माँ है, यह था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा, रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: डॉक्टर योगेश का जन्म 19 मार्च 1945 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।
1: जिंदगी कैसी है पहेली
0: हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए

0: हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश। अब आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
1: अब कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो टेलीग्राम आया अपना सरिता चौधरी जी का कि योगेश कुमार तुम फौरन दो। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो एलबी लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सितारे कहीं दूर जन्दिन डल जाए। और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का तबला था जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नयन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नयन हमारे तो हमको एक गाना चाहिए ले लो। तो मैं सेट पर फिर जाता था, राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था हाँ ये दूसरा गाना भी दिखाइए ना, ऐसा करके बता मेरे आदमी की जी जी। तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।
2: हमारे सांझ सितारे देखे लाखों सपने सच ये कभी होंगे या नहीं।
1: मेरा बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मेरे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पर, मैं टेप रिकॉर्डर ना कुछ, और दादा ने बोला कि कभी मुझे पूरा मुखड़ा योगेश को लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी और मैं ट्यून लेकर के पैदल रोड से बस में बैठा और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिल गाना ना बज जाए तो मैं ट्यून भूल जाऊं।
3: बहुत अच्छी बात।
1: और मैं चला जा रहा हूँ, चला रहा हूँ, चला रहा हूँ, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो भाई कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर रहे दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो गया था तो दादा के साथ मालूम है।

गुजर जाए दिन दिन दिन ये हर पल के दिन दिन गुजर जाए दिन दिन दिन ये हर पल के दिन दिन कितनी है याद।

तो चले ख्वाब मेरे हो गए रंगी गुजर जाए दिन दिन दिन हर पल गिन गिन गिन किसकी है याद।

0: गुजर जाए दिन दिन दिन।
1: वो पहला पर्दा, वो पहली बाती, इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अलहोड़ की बाती। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959

छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुरेश कुमार हीरो थे। आगे चलकर इन्होंने कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुरेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम है मूल मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुरेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन योगेश खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से चित्र भारती। ये आकाशवाणी जैसलमेर है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।
1: उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी की ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित सर्वेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही। उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। Pandit Kaivalya Kumar Gurav is a renowned musician and disciple of Pandit Sanganeshwar Gurav. He started his musical journey at the age of 15 with Marathi Natya Sangeet. After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru Pandit Sanganeshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honoured with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
1: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबला पर पंडित जडेश रवार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरव अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस काढ़ारे, द्वितीय ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्वितीय ताल,

I can't.

ಮಾಡ.

Ha ha ha ha.

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल लोहे तुम, दो तीन ताल आ रंगीला आ।
1: That was राग दुर्गा। Now you will listen to राग अभोगी। रूपक ताल ए हो तुम, दो तीन ताल आ रंगीला आ।

Yeah.

León, León, León, tú.

Rega magre sa re da sa.

ಜಗಜನಮಗಿರಿ ರಮನ ಆಸ ಮೋಕ್ಷಗಿರಿ ಅಪ ಜನಮೇ ಓ.

ಅರಂಗಿಲೆ ಆಮೋರೆ ಕರ ಅರಂಗಿಲೆ ಆಮೋರೆ ಕರ ಕಡೆಯ ತರ ಸಾ

ಸಮನಾಯನ ಆಯ ಸಾವತ್ ಓ ಬಲವಾ.

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आबोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ हूँ प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाली विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के भुलिया में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा बाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और बाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतु गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुए और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा बाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत में अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीएए के संधिजल संधि पर हालिया तथा कथित फैसलों को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Karakopi. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है. भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है. भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है. मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं. इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा.
2: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashwani, the Ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifacts in Sweden, Per Stenfeldt, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML has joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment which is critical for production of advanced small-size semiconductors. A Delhi court today sent the prime suspect in the lead paper leak case, P.V. Kulkarni, and another accused, Manisha Vaghmare, to CBI custody for 7 days. Special CBI judge Ajay Gupta ordered the remand after the probe agency submitted that the DO needed to be taken outside the national capital for further investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. In IPL cricket, chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans were 177-1 in 16 overs against Kolkata Knight Riders in Kolkata when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 245-2 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी दिन के 11:55 पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।